在印度核能领域开展私人投资和新业行业合作的机会。新闻报告完了。

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

मालिक यकीन कान बरसामा मरेगा तर हडप तरान दुनिया यांग बरबासिस अतुरान सरता कमिटमेंट तर हडप दियो लोग दन डिप्लोमासी प्रधानमंत्री मोदी मनम पाइकान तेरे माकासी के पारा नॉर्वेजिया करना तेला बरदीरी तुरु बरसामा इंडिया दला मनेवान टेरोरिज्म सलामा मासा मासा सूल इतर सिबुत नन मनेबूत ने सबगई चर्मिनान दारी पर सहावतान से जाती स जुमला नोता कसम पाहमान एम ओ ऊ दीतांदा तांगी दालम परतेमुआन बिलेत्र इनी मंचाकोप सेक्टर सोलूसी क सेहतान बट टेक्नोलॉजी तरतिंगी क सेहतान डिजिटल सरता इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक डिजिटल मंत्री लुहार नगरी डॉक्टर एस जय शंकर मनम पाइकान और जापान सलामत का पारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश पंगांगुंग हानकर हुरमतान तरतिंगी नॉर्वेजिया यकनी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट नलाम सबुआ उंगुहान दी मीडिया सोर्स डॉक्टर जयशंकर मनतकान बाबा पंगांगुंग आराहान तरसिबुत मरुपकान बंतुक पंगांगुआन अतास उपाया गिगी बापाक दालाम मम्परकुआत क मित्रान अंतारा इंडिया था नॉर्वेजिया संघ मंत्री जुगा मनतकान क अकियान्या बाबा पंगारहान इनी बस हरता कंजुगान बस जारा बापाक मोदी अकान मम्बुका बाबा बारू बागी कर्ज समा इंडिया देंगा नॉर्वेजिया नन कावासा नॉर्डिक मंत्री लुआर नगरी डॉक्टर एस जय शंकर बरबंचांग देंगान मंत्री लुआर नगरी ओमान बदर अलबू सईदी दलाम सबुआ उंगोहान दी मीडिया सोशल डॉक्टर एस जय शंकर मनेबुत का बाबा मरे का मम्बाहास परकम बंगान तरकीनी दी आसिया भारत सरत बरबगई एस्पेक्ट कर्ज समा बिलेट्रल अंतारा इंडिया दन ओमन मंत्री परतहनान राजनाथ सिंह मंगामवारकान ओपरासी सिंदूर सबकई बुक्तिन्यात्या ट्रांसफॉर्मासी इंडिया मंजारी सबुआ बांगसायांग कुआत परचाया दीदी डंचाका सात बरपिटारो दी हडपान कम्युनिटास दी डायस्पोरा इंडिया दी हानोई बापक सिंह मनेगास्कान बाबा मस्कीबुन इंडिया तेता बर कमिटमेंट पारा कभी जानतीदा मंगुनाकान सजानता न्यूक्लियर सबकयांग परतमा नगारा इनी तीदा अकान तुंडक पारा परमर्सरान न्यूक्लियर दन सियाप उन्तुक मम रेस्पॉन्स देंगान तेगा सर हडाप सिगाला तिंदाकान गगाबा यांग दिलाकुकान मुसू इया मनोरोती कियान मन इंकात कान्या क डुकुंगान इंडिया दी कांचा इंटरनेशनल बरकरात क माजुआन लुआर बिया सायांग चपाई दी वावा क पिंपिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मंत्री मंजसा कम्युनिटास इंटरनेशनल उन्तुक बर मित्रा देंगान इंडिया दामी मम वजूदकान पडमयान क्लोफल पर तुम्बुहान बर सामादान क माकमुरान सयारा मंडेसा कम्युनिटास डायस्पोरा इंडिया उन्तुक तुरुत बर कॉन्ट्रीब्यूसी दालाम पर बांगोनान बांगसा पमरिंदा इंडिया मनेतकान बाबा मरेका सेडांग मानताऊ सचारा चरात बाबा पन्याकित वीरस इबोला यांग बारू बारू इनी सजादे दीदी पब्लिक डेमोक्रेटिक कांगोदान उगांडा मनसुल पने तापान स्टेटस जरूरत क सेहतान माशराकत ओले ऑर्गेनासियासी क सेहतान दुनिया सुम्बर सुम्बर तरकईत मनेबुतकान बाबा पारा पजाबा सीनियर कॉमेत्रियान क सेहतान तेला मन एंजाऊ पर क मांगान सिचूसी इनी तरसबुत दनमुलाई मर मनरापकान लांका लांका पंग चाहान क सेहतान दन माशराकत मरेका मनेगास्कान बाबा हिंगा कीनी बलूम अडा खसूस इबोलायांग दिला पुरान कान द इंडिया दन ऋषिको यांग मने चाकान नगारा तरसबुत साथ इनी मासे तरलोंगान मिनिमल क दांति दमी कियान सुबगई लांका लांका क हाथी यंग मैक्सिमल लांका लांका पंगवासान दान क सियापकान सरांग दी परकरात दी बरबगी तितिक मासूक नगारा सरता दी दलाम से समका सेहतान माचेरा क्यात सबो रेलेगासी इंदुस्ट्री तिंगा तिंगी दारी अमेरिका सरिका तेला मंदकांगान डिस्कुसी तिंगान मंत्री साइनेस दान टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह दी न्यू दिल्ली पंबा हसान तरसबुद्दी श्रीलंगार का अनगुना मन एंजाऊ पलुवंग पलुवंग बारो इनी इन्वेस्टासी स्वस्थ दान कोलाबोरासी इंडस्ट्री सेक्टर न्यूक्लियर इंडिया तेलेगासी यांग हादे मंचकुप पर वकीलान सीनियर दारी इंडस्ट्री न्यूक्लियर अमेरिका सरिकात पर पमांकू कम पंतिंगान बिजनेस सरता पजाबत पजाबत यंग तरकई दिंगान कर्जसा मा इंडिया अमेरिका सरिकात दिबिदांग इनर्गी न्यूक्लियर सिपिल दान टेक्नोलॉजी चांगी

लावतान्या कलिम नगारा जत जतनपुर गृपेन स्वेदिया मंगेवाल पिसावत यांगदी तुम पाघी बापाक मोदी सात ममा सुकी विलाया उडारा नगारा तरसिबुत बलियाव दे सांबुत ओले मित्रा सजवात्या दारी स्वेदिया बापाक उल्फ क्रिस्तरसन दी बंदारा दान मनरीमा सांबुआ दान सेमिनोरियल कोमनितास इंडिया स तेम्पात जुगा मनंबुत क दाकांगांग बलियाव देंगान पर तुंजुंगान तारी भरतनाट्यम जालाम सबुअ उपचारा खुसूस पुत्री मा कोता विक्टोरिया दारे स्वेदिया मंगा गाराकान कपाडा प्रधानमंत्री मोदी पंघारगान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस साला सातु ताना का होरमतान तरतुआदान पालिंग बर्गेन के सी दे स्वेदिया यंग दिबंतुक पाडा आभाद क लपान ब्लास पंगाराकान इनी मरुपकान तांडा क होरमतान तरतिंगी स्वेदिया यांग दी बड़ीकान कपाडा कपाला पर मरेंदहान असिंग सबगई पंग अकुआन अतास पंग अबादिकान पब्लिक या लुआर बिया सा सरता कौनसीबूसी दाला मम पर कुआ थुबंगान देंगान स्वेदिया प्रधानमंत्री मनम पैकान रासा तरी मकास यांग मंडलम कपाडा पुर्त्री महाकोता विक्टोरिया दन कपाडा राकेत स्वेडिया अतास्क होरमतान इनी बलिया मंडे डिकासिकान पंगाराकान तरसेबुत सतु कोमा अंपत मिलिय राक्यात इंडिया सरता कपाडा पर सभातान आबादी अंतारा इंडिया दान स्वेडिया प्रधानमंत्री मोदी मन्यतकान बाबा पंगानुवार गिराकान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इनी मरुपकान पंगेसान कंबाली अतास एकतान सजरा दन हुबुंगान पराबादान अंतारा इंडिया दन स्वेदिया से कालेगु सबुआ पंग होरमतान तरहड़प कंग हांगा दान कासी यस्तायांग यंग मन्यातुकान कदुआ बांगसा तरसिबुत प्रधानमंत्री मोदी मनुपकान पर मिम्बिम आसिया प्रतमा यांग नी अनुग्राही पंग होरमतान इन पंग हरगान इनी पंग गनु अर हर पंग अनु रेहान पंग अरहान इनी मंडाई सबुआ तुंगाक सजारा दालाम कोमित्रान स्थित तुर्गीस इंडिया स्वेडिया धनमन चर्मिकान कोमितमेन बरसामा कदुआ नगारा इंडिया ममा जुआन कर्ज सामा बिलेट्रल सरता बर कॉन्ट्रीब्यूसी बागी पर दमयान दान क माकमुरान ग्लोफल प्रधानमंत्री स्वेडिया बापक उल्फ क्रिस्टर्सन दान प्रधानमंत्री मोदी सालिंग पर तुकर चंदारा माता खुसूस गुना मनाकान वरिसान पर्याही हादिया नोफल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हादिया दारी पमरेन प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन बरूपा सबुआ कोतक यांग बड़ी सी दुआ रिप्लिका एपिग्राम तुलिसान तांगान कार्य गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर दि सरताई निंगान टेक्स पंजलासान सिंगा सरता सबुआ फोटो गुरुदेव टैगोर यंग दिया मेल पाता हूँ सर रिबु सम्मेलन रातुस दुआ पुलु सातु सात बलियो बरकुंजुंग का यूनिवर्सिटास उपसाला कार्य कार्य असली तरसिबु तेंग बारो बारो इनी दीते मुकान दी अरसिब नेशनल स्वेडिया दी चिप्तकान ओले गुरुदेव टैगोर सलामा कुंजुंगान्य का स्वेडिया बारता हूँ सरिबु सम्मेलन रातुस दुआ पुलु सातु धन सरिबु सम्मेलन रातुस दुआ पुलु अन्नाम प्रधानमंत्री मोदी मम पर संबाहा कान कपाडा प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन सातु सेठ कुंपुलान काला नवेंद्रनाथ टैगोर बसरता सबुआ तास बंतुआन तंगान खुसूस दारी शांति निकेतन यंग मन अम्पेलकान मोतिफ मोतिफ पिलिहान गुरुदेव गुना मम्बर डायाकान पारा परजायान लोकल तास तरसबुत मलाम्बांकान फिलोसिफ टैगोर बाबा सैनी दीदा समस्तिगान्या तरबतास हान्या दी दलाम गैलरी माँ लाइनकार हानोस मनुपुकान क हिडुपान क दलाम बेंदा बेंदा सा हारी हारी मन जिम बातानी क सेंजांगान अंतारा एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल दन फुंगसियाल मस्किपुन गुरुदेव टैगोर तिरा दपात मलाकुकान पर जलानान का स्वेडिया परता हूँ सरिबु सम्मिला नातु सिगा बिलास उन्तुक मनरी महाडिया नौफल इया दीतरी मा ओले राजीव गांधी राजीव गुस्तावा सात बरकुंजुंग का स्वेडिया पड़ता हूँ सरिबु सम्मेलन रातु जुआ पुलु सातु हाडिया हाडिया इनी मलम्बांकान वाडिसान बुडाया धन इंटेलेक्चुअल बरसामा अंतारा इंडिया धन स्वेडिया
सरता वाड़ूपकार मंतुक पहुंग होरमतान तराडा वाड़ीसान आबादी रविन्द्रनाथ टैगोर पर तुकरान हादिया इनी जुगा बढ़ते बातकान दिंगान पर इंगता सरातुस्ता हुन कुंजुगान पर से जारा गुरुदेव का स्वेडिया पाड़ता हुन सरिबू सम्मेलन रातो जुआ बुलू नाम प्रधानमंत्री मंग अदाकान कंसुलितासी बिलेट्रल दिंगान प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन पुत्री माकोता विक्टोरिया दारे सवेस्तिया जुगा तुरुत सरता दाराम परतिमुअन तिरसिबुत धनमनम पाइकान सलाम हांगत दारियांग मूलिया राजा कार्ल कलाबलास गुस्तोफदान रातु सिल्फिया प्रधानमंत्री मनम पाइकान उचापान सलामत्यांग हांगत अतास परिंगतान उलांग ताहुन का लपान पुलू यांग मूलिया सांगराजा कदुआ पोमिम्पे मनेंजाओ स्पेक्ट्रम हुबुंगान इंडिया स्वेदिया सजर मनेलु दान मन कुई अदान्य मोन्यूमेंट यांग कियान वनिंका दालाम हुबुंगान रिलेटल दिबार बागी सेक्टर मलिंपुती पर्डागंगांग दन इवस्तासी इनोवासी ट्रांसेसी हिजाओ टेक्नोलॉजी बारू पर तहानंदन किए मनान टिटी टलासी उके आम अंतरिक्षा पनलितियान पंडिडिकान बुदाया सरतपर तुकारान अंतरमाशरा ख्यात मरेका मनेकास्कान कम्बाली कमिटमेंट बरसामा उन्तुक मंपरात हुबुंगान यांग दीदा सरकान पारा निलाई निलाई डेमोक्रासी बरसामा सरता दीदोरोंग ओले इनोवासी कबर लांजुतान दान कतर तराइतकान पनलितियान दान पनर बांगान एर एंडे मरेका मंगारिस बाबा ही पंथिंग ने मन जागा कतर लिवतान पॉलिटिक तिंगा तिंगी तान दियलो करलंबांगान सचारा रूटीन गुना मांदू का मित्रा न्यांग तरुस बरकम बांगान इनी मरेका सपाकात उन्तुक मनिंगात कान हुमंगार इंडिया स्वेदिया का तिंगा कमित्रान स्थितुर्गिस इनी अकांदी पांदू ओले एम्पात पिलर दियलोक स्थितुर्गिस उन्तुक से अभिरिथास जन कियमानान कमित्रान इकोनॉमी गेनरासी बड़ी कुतन्या टेक्नोलॉजी भारूदान कनेक्टिविता तरपरचाया सरता मंबंतुक मासादपान बरसामा मनुष्या प्लैनेट कसे हतान दन क तहानान उन्तुक मंग ऑपरेशनल क मंत्रियान से तुर्किस तरसिबुत क दिवपमिम्पिम मंग अडोप्सी रंचाना आक्सी बरसामा इंडिया स्वेडिया दुआ रिबु दुआ पुलव नाम क दुआ रिबु तिक पुलु यंग मन अधिक कान पेटा जालान कॉम्प्रिहेंसिव बागी गर्जा समाधि विदांग पॉलिटिक इकोनॉमी टेक्नोलॉजी क्यामानान इक्लिम थरतो हुबुंगांग अंतमार शरा ख्यात प्रधानमंत्री मोदी मंगा ऑपरेसियासी कतरली बतान बर्क लांजुतान स्वेडिया देंगन इंडिया दी बर्बगी सेक्टर स्थितुर्गिस तरमासुक इनोवासी टेक्नोलॉजी बरसी मनफोक्तु चांगो चंगी मोबिलितास कर बर्क लांजतान दन ट्रांसफॉर्मासी डिजिटल प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन मंग अप्रिस्यासी क माजुआन पेशा त्यांग दिचेपाई इंडिया दी बिडांग ट्रांसफॉर्मासी डिजिटल दन कर्च डासान बुआदान आई यह जो का मंचा दात कॉन्ट्रीब्यूसी पॉजिटिव कम्युनिटास इंडिया तराडाप पर इकोनोमियान दान इकोसिस्टम इनोवासी स्वेडिया प्रधानमंत्री मोदी मन गुंडांग पार्टिसिपासी लबु लांजू धारे स्वेडिया दालाम केसा पर तुम वुहान इंडिया कदो पमेम जोगा बर्तुकार पंडगांग मनिंगु इसी रीजनल दन ग्लोफल उत्तमायांग मंजारी क्वा पंतिंगान बरसामा प्रधानमंत्री मोदी मनिम भाईकान तरीमा कासी कपाडा स्वेडिया अतास दुकुंगांग क्वातना दालाम उपाया पम बरतासां त्रियोरिज्म कदुआ पमेंपेम तरसुबुत तल सलांजुत मने गासकान कंबाली कमिटमेंट मरेका उन्तुक मम प्रमोसिकान पर दमयान स्टेबिलितास रांदाई पोसा घ्यांगतांगा सरता पर तुम्बुहान इकोनॉमी यंग बर्क लांजुतान प्रधानमंत्री मोदी मंबरी का संबुतान दी हड़ापान यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री ई एर ते दी कोतनबर्ग या मने गान कान पंथिंग का मित्रान यंग चालिंग पर छाया दी तेंगा लिंकुंगान क्लोफल यंग कियन कॉम्प्लेक्स दन पनु करीर पासियान प्रधानमंत्री मनेरो ती पर तुम्बुहान इकोनॉमी यंग प्रसाद रिफोर्मासी इकोनॉमी गेनरसी मंदातांग कम उदाहन बड़ोसाहा फोकस पाराता था कलोरा प मंत्रीहान इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक डिजिटल यंग तरुस बरकमांग इकोसिस्टम मैनुफैक्चर यंग दिया निमेस सरता सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर यंग मंगलामी ट्रांसफॉर्मासी चपात या मनेगास्कान कंबाली वेसी इंडिया यग्नि दिया चंकान उन्तुक इंडिया दी बुआत
दी इंडिया दानी एक्सपोर्ट दाड़ी इंडिया सरता मंदगुंग पड़ूंग सहा।

0: Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about Prime Minister's ongoing visit to five nations, a new era of bilateral ties with the Nordic countries. And today we have with us international affairs expert Professor Gulshan Sachdeva. Welcome to the show, sir. In the fourth leg of his five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi reached Norway today for the third India-Nordic summit and other bilateral engagements. The visit marks the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. The Prime Minister was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Professor Sachdeva, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the joint presser, he stressed upon the India-Norway Green Strategic Partnership. He, in fact, also talked about the green shipping to blue economy. And while winding up his address, he also talked about the Green Strategic Partnership developing into a trusted, futuristic and long-term partnership. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say.
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी.
2: हाउ डू यू सी दिस?
4: All these statements which Prime Minister has made, this also shows a very clear strategy of India towards Europe. For long, we have understood Europe and India-Europe relation purely in the context of trade and economics. But now I think what has really happened is in the last few years, we have clearly identified Europe as a very important partner for our ambitions to become a developed economy by 2047. And what we really need

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी

0: इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित

0: आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया

0: रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: द The summit was also attended.

0: in university during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems, and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of to conduct the examination. Arun Rai runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states a pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment in 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत ईएफटीए मुआहदे के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सबक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वली अहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
3: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
2: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी काबिल तजदीद तवानाई दिफा पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकत दारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाल यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा पायदारी काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। यह सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क आइसलैंड और फिनलैंड के वजीर आजम के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलावामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड ईरान नीदरलैंड स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत दवासाजी रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: लोकसभा स्पीकर

0: जानिब से हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीज़न में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज़ में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत खत्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ्फुज़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहद अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकर जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में

0: रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज़ होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुज़ाकरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में RGKR मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे दिव्यांश श्रीवास्तव द्वारा संतूर पर बजाया राग, राग बसंत मुखारी। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सचिन शर्मा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्यांशु श्रीवास्तव का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। तबले पर संगति कर रहे थे सचिन शर्मा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का।
1: विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका कुल परिव्यय 1,00,000 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को उच्च प्रभाव वाले शोध, तकनीकी विकास और नवाचार, डीप टेक और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड योजना के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि भारत में ऐतिहासिक रूप से ये निवेश कम रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमता, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उन उच्च जोखिम वाली और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का समर्थन करना जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये योजना मुख्य रूप से कोई अनुदान या छोटी अवधि का लोन नहीं है, बल्कि ये उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों वाली परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। ये फंड दो स्तरीय तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। विशेष प्रयोजन कोष यानी SPF, इसका प्रबंधन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा किया जाता है। द्वितीय स्तरीय फंड मैनेजर यानी SLFMS, इसके तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, वेंचर कैपिटल और अन्य वित्तीय संस्थाएं AIFS, NBFCs आती हैं, जो इन फंड्स के जरिए रियायती दरों पर लंबी अवधि का वित्त पोषण यानी लोन या इक्विटी के रूप में प्रदान करती हैं। वित्त पोषण आमतौर पर आंकलित परियोजना लागत यानी असेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% तक कवर किया जाता है। 13 मई 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के द्वारा रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन RDI फंड स्कीम के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्कीम के तहत पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड डिसबर्समेंट जारी किया गया। RDI स्कीम की स्टेटस रिपोर्ट पर एक संग्रह जारी हुआ और क्वांटम सेफ इकोसिस्टम इन इंडिया पर एक रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने RDI पहल के तेजी से संचालन पर जोर दिया और कहा,
2: हमने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से गुजारिश की थी कि हमें 5,000 करोड़ दिया जाए, हम इसे 3 साल में खत्म करेंगे, मतलब कमिट करेंगे। तो सबको ये लगता था, अरे TDB कैसे 2,000 करोड़ खर्च कर लेगा। जब हमने कॉल लॉन्च की थी

0: आपने दिल की बात कही थी कि ये 2000 करोड़ मेरी आशा है कि हम 1 सितंबर जब हम अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हों तब हम खर्च करें। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भाई ये देख लो कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया। हमने पिछले 1-2 महीने में कोई संडे ऐसा नहीं था कि हमने 8 घंटे मीटिंग न की हो आईसी की। क्वालिटी तो ऐसा है कि अब जो IIT बॉम्बे में मैं गया था अभी जो भारत इनोवेट के उस देखने के लिए, तो मुझे ये लगा कि जो हमें 22 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे करीब 15, 16, 17 के करीब हमारे स्टार्टअप वो भारत इनोवेट में जा रहे हैं। उसमें भी देखा जाए तो लिस्टेड कंपनी भी हैं, MSME भी हैं और स्टार्टअप भी हैं। फंडिंग का रेंज 3 करोड़ से लेकर के 285 करोड़ तक की फंडिंग की रेंज है, तो काफी वाइड रेंज की फंडिंग है। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिली है इस पूरे RDI स्कीम के तहत। विद इन 3 मंथ वी गॉट 124 प्रोजेक्ट प्रपोजल, मोर देन 25,000 करोड़ प्रोजेक्ट वर्थ एंड मोर देन 10,000 करोड़ आस्क फ्रॉम RDI फंड। RDIF फंड आज की तारीख में 9-10 महीने के अंदर 1 जुलाई में ये पूरा कैबिनेट अप्रूवल के बाद आज फंड डिसबर्स कर रहे हैं। ये पहली बार 2024 में अनाउंस हुआ था, तो हम लोगों की ये थी कि इसको TDB एज ए फंड मैनेजर लेके आए, लेकिन NRF में आए हम सेकेंड लेवल फंड मैनेजर उसके साथ जुड़े। लेकिन जो जर्नी हमने 1 जुलाई से शुरू की मुझे अभी भी वो सारी डेट कंठस्थ याद है। 7 जुलाई को जब हमने पहली स्टेक होल्डर मीटिंग की थी, उसके बाद हमें ये टारगेट दिया गया था कि 10 दिन के अंदर में हमें पूरी स्कीम की गाइडलाइंस बनानी है। हम लोगों ने फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस करके बनाई, हमने कुछ बैकग्राउंड वर्क किया हुआ था, 3-4 दिन के अंदर में हम लोगों ने SFR भी बना ली। और जब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजे तो वहां से करीब 75 क्वेरी हमको पहली बार आई थी, जिसमें SFR पे 3-4 क्वेरी ही थी, बाकी सारी क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस और जो हमारा SGMT डॉक्यूमेंट था उस पे थी। खैर जब ये बन गया तो 3 नवम्बर को लॉन्च होना, अब NIA डॉक्यूमेंट पे काम करो। तो पहली बार तो किसी को पता ही नहीं था ये नई चीज, इसमें कौन सी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के लगेगी। नॉर्मली हम लोग NIT निकालते हैं टेंडर, इसमें टेंडर है नहीं। RFP निकालते, RFP इसमें है नहीं, क्योंकि RFP का वो हमें पता है कि क्या आउटकम है। देन वी जीरो डाउन कि NIA डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो NIA का कोई हवा ही नहीं, NIA डॉक्यूमेंट बनती क्या है, कैसे बनेगी। और था कि 3 नवम्बर तक इसको प्रधानमंत्री जी से वहां पर लॉन्च कराना है। दैट्स द काइंड ऑफ टाइमलाइन वी वर्क। NIA डॉक्यूमेंट भी हम लोगों, चूंकि हम टेलीकॉम में काम किए थे तो उसके NIA डॉक्यूमेंट का मेरे पास थोड़ा आइडिया था, हमने उससे स्टार्ट किया। बाद में वो स्पेस फंड के भी NIA डॉक्यूमेंटली बन गया, सब हो गया, लॉन्च हो गई। अब SLFM को कॉल फॉर करना है तो आप SLFM पोर्टल पे लग जाओ। ना तो वेंडर रेडी है, ना हमारे पास कोई टर्म वगैरह रेडी है, बट हम लोगों ने फिर वो भी किया, SLFM पोर्टल भी बनी और हम सारे करीब 200 प्लस हमारे SLFM ने अप्लाई भी किया, अभी उनकी इवेल्युएशन चल रही है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा हम लोगों ने पिछले 8-9 महीने में तय की है, चाहे वो दिन हो या रात। और जब हमने अपनी फर्स्ट कॉल लॉन्च की उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतनी ज्यादा हमारे पास ओवरवेलमिंग एप्लीकेशन आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे RDIF जर्नी में हम लोगों ने बहुत ही एक उसको कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है कैसे एक प्रोजेक्ट को, एक पूरे स्कीम को इस लेवल पे लेके आना। जब आप देखेंगे 22 कंपनी, उन कंपनियों को तो आपको लगेगा कि हमने क्या अचीव किया है। जैसे पहले अश्वमेध जग होती थी, चक्रवर्ती सम्राट हम तभी बनते थे जब उसका घोड़ा दौड़ता था, उसको कोई पकड़ा नहीं आगे। जो हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो एक यज्ञ है। उसको यदि अश्वमेध यज्ञ से हम तुलना करें तो वो जो दौड़ने वाला घोड़ा है RDI ही है। ये यदि ये संघ से चल गया, ये घोड़ा आपने खड़ा कर दिया, अब इसे आगे दौड़ना है, बहुत सारी बाधाएं आएगी। इंटरनल बाधाएं भी होंगी, एक्सटर्नल भी होंगी। जिस कंपनी को हमने फंड किया पता चला उसको एक्वायर करने की एक वो एक्सटर्नल बाधाएं होंगी। यदि ये RDI रूपी घोड़ा दौड़ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को विकसित भारत 2047 तक बनने से कोई नहीं रोक सकता।
1: TDP इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट प्रस्ताव कॉल लॉन्च करने, अग्रीमेंट साइन करने और फंड जारी करने वाला पहला सेकंड लेवल फंड मैनेजर बन गया। उन्होंने बताया कि इस पहल को कम समय में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 124 प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिले। चुने गए प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप्स, MSMEs और स्वास्थ्य, ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों की लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI फंड के तहत फंडिंग के लिए TDB द्वारा चुनी गई 22 कंपनियां देश के कुछ बेहतरीन स्टार्टअप्स में से हैं और उनमें से कुछ 15 को भारत इनोवेट्स 2026 के हिस्से के तौर पर देश भर में खोज के जरिए चुना गया है, जो कि जून में फ्रांस के नीस में होने वाला भारत के टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक ग्लोबल शोकेस है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना सितम्बर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के

0: तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों को वाणिज्यिक उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित करना है ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। बोर्ड स्टार्टअप्स औद्योगिक चिंताओं और अनुसंधान संस्थानों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने या आयातित तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुदान, सॉफ्ट लोन, रियायती ऋण और इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, चिकित्सा उपकरण, कृषि, रक्षा, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में तकनीकी उद्यमियों का समर्थन करता है। अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए ये बोर्ड फिनलैंड, स्पेन, इसराइल, UK, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति, विशेष रूप से 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति और स्वदेशी हंसा 3 विमान की पहली उड़ान को याद करने और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता देने के लिए है। इस वर्ष इसे नई दिल्ली स्थित ब्रिक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII में आयोजित विज्ञान टेक 2026 नामक एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत में हमेशा से वैज्ञानिक प्रतिभा और सक्षम मानव संसाधन मौजूद रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद विज्ञान और नवाचार को अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में तीव्र तकनीकी प्रगति हुई है। भारत का स्टार्टअप परितंत्र 2014 में मात्र 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर आज 2 लाख से अधिक हो गया है, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र बन गया है। भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 80 से सुधर कर 38 हो गई है, जबकि देश आज पेटेंट के मामले में विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है, जहां 1 लाख से अधिक पेटेंट दर्ज किए गए हैं। इनमें से 55% से अधिक पेटेंट भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों और नवाचार आधारित अनुसंधान में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। पिछले दशक में शुरू की गई कई महत्वपूर्ण पहलों की वजह से भारत को अग्रणी वैज्ञानिक देशों में स्थान मिला है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत AI मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार पहल, महिला वैज्ञानिकों के लिए वाइज किरण योजना और स्टार्टअप के लिए निधि कार्यक्रम ने नवाचार, उद्यमिता और समावेशी वैज्ञानिक विकास के अवसरों का लगातार विस्तार किया है।
1: हम सब जानते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल DST द्वारा मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में ये समारोह आयोजित किया गया है। हमारे साथ है RCB फरीदाबाद, जो कि DBT की एक अनुसंधान संस्था है, और उसके साथ है हमारे वैज्ञानिक। हम इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में और इनका जो यहाँ प्रदर्शित उत्पाद है उसके बारे में।
2: नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है, मैं 4th ईयर PhD स्टूडेंट हूँ RCB फरीदाबाद में, और हम लोग काम करते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर, जैसे कि फिनाइलकेटिनूरिया। फिनाइलकेटिनूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि जन्म के साथ ही होती है, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, जिसमें आपको जो प्रोटीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन आप नहीं ले सकते, जैसे दाल, चावल या फिर ये चीज आप नहीं खा सकते, तो आपको एक स्पेशल डाइट चाहिए होती है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर ये डाइट ना मिले तो जो बेबी होता है, जब उसको बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको IQ प्रॉब्लम, उसको मूवमेंट, चलना फिरना और कॉग्निटिव फंक्शन जैसे संतुलन वाले जो भी काम करने होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल फूड बना रहे हैं जो कि वो प्रोटीन से ले सके। तो उसके लिए हम एक एंजाइम यूज कर रहे हैं, जिससे हम नॉर्मल प्रोटीन जो होता है, जैसे सोया प्रोटीन हो गया या फिर आपका मिल्क प्रोटीन हो गया, उससे हम उस जो माइनो एसिड जो प्रॉब्लम करता है, फिनाइलएलानिन प्रॉब्लम करता है उसमें, उसको हम रिमूव करते हैं, जिससे वो आप फिर पेशेंट को दे सके, जिससे कि वो आराम से नॉर्मल जिंदगी जी सके थ्रू आउट एज अ नॉर्मल किड।
1: क्या इसका कुछ पेटेंट वगैरह किया गया है या इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ट्रांसफर किया गया है, लोगों को कैसे मिलेगा?
2: जी, हमने एक्चुअली इसको पेटेंट करा दिया था। पहले इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करे हमने और माइस के ऊपर, जो कि इनका PQ जो फिनाइलकेटिनूरिया डिसीज है उसी का माउस मॉडल होता है, उस पर हमने हमारी जो बनाई हुई डाइट है वो टेस्ट करी, जिसमें हमने देखा कि काफी इंप्रूवमेंट था, जो नॉर्मल फंक्शन थे माइस के कम्पेयर टू जो माइस नॉर्मल डाइट पे थे उनसे काफी ज्यादा बेटर थे। और उसके बाद फिर हम अब उसको जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लाइक जैसे FSSAI, वहां से हम अप्रूवल पे उसमें जा रहे हैं, जिसमें हम लार्ज प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एम्स जैसी जगह पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेंगे। उसके बाद हम इसको पैकेज कर एज अ नॉर्मल फूड सप्लीमेंट जो कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट और ये सब होता है वैसे प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी इंडिया में था बट वो बाहर से इम्पोर्ट होता था इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था। बट हमारा वाला जो इसके हमने साइंटिफिक पब्लिश भी करा और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट भी करा है तो इसकी कॉस्ट उससे 8-10% सस्ती है। फिर बाद में इन द एंड ये आपको एज अ फूड सप्लीमेंट ही अवेलेबल होगा एज अ स्पेशल मेडिकेटेड फूड।
3: मैं सुमन गुर्जर वैज्ञानिक भारत मौसम विज्ञान विभाग, हमने मल्टी हजार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है। इसी के अंतर्गत हमारे पास में एक और पोर्टल है जिसे हम मौसम ग्राम के नाम से जानते हैं। यदि आप उसे गूगल में मौसम ग्राम टाइप करेंगे तो आपको पहला लिंक जो मिलेगा वो मौसम ग्राम ही मिलेगा। इस पे आप अपने किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मैप पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको आवरली, 3 आवरली, 6 आवरली, जो अगले 5 दिन, अगले 10 दिन और अगले 1 घंटे में आपकी जगह का कैसा मौसम होने वाला है उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप इसमें अपनी ग्राम पंचायत तक को जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पे क्लिक करके आप वहाँ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: मैं अंशुल चौहान, वैज्ञानिक। इस प्रदर्शनी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हम लोग मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शोकेस कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली आत्मनिर्भर और पूरी तरीके से IMD द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें हमने डिफरेंट सेक्टोरियल एप्लीकेशन बनाए हैं, जैसे मरीन के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग है, एविएशन के लिए अलग है, इंडियन रेलवेज के लिए अलग है, नेशनल हाईवेज के अलग है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक टूल हमने बनाया है। रिसेंटली हम चारधाम पोर्टल को भी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं जिसमें हमने रूट फोरकास्ट दिया है जिससे यात्री एडवांस में 5 दिन पहले आपको वार्निंग देख के अपने टूर और उस तरीके से यात्रा को प्लान कर सकते हैं। ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है। more than 250 crore पैसा हमने इसमें सेव किया है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, ऑटो फोरकास्ट एंड AI एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑलरेडी इसमें।

يد الله.

0: तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
3: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-North

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज

வாங்கள். आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत यानी म्यूज़िक से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब यह है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संगीत सुनिए। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहें जैसा चाहें सुने और फिर अपना मूड बदल लें। कह सकते हैं कि संगीत हमारी ज़िंदगी के हर पल का साथी है, हमारा हम सफर है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, हम यही कहेंगे कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत का संग अपनाइए। वजह, कई शोध भी यही बताते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोते वक्त आपको गाना सुनना चाहिए या खाते वक्त गाना सुनना चाहिए, तो बस संगीत के लिए सोचिए मत। हर वक्त आप संगीत सुन सकते हैं। सोते समय सुखदायक संगीत सुनना शुरू कर दीजिए। एक सुखद नींद के लिए सोने से पहले अगर आधा घंटा आप संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप पाएंगे कि तनाव मुक्त नींद और पर्याप्त नींद में ये कितना सहायक है। धीमा संगीत सुनने से आप आराम महसूस करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, संगीत से चिंता भी दूर होती है और इससे आपको स्वस्थ जीवन मिलता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। संगीत के इन सुनहरे पलों को और भी शानदार बनाने के लिए बना रहे आकाशवाणी का साथ। जी हां, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत में ढेर सारे बदलाव आए हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिकता के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से संगीत में आए बदलावों को ऐसे समझा जा सकता है कि हम कह सकते हैं 1950 का जो दशक था वो शास्त्रीय संगीत का संरक्षण का दौर था। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम 1952 में 20 जुलाई 1952 को राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक को आम जनता तक पहुंचाना और संरक्षित करना था। नेशनल ऑर्केस्ट्रा, दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया था। शास्त्रीय संगीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया और आज तक इसके 67 यानी 67 से ज्यादा संस्करण पूरे हो चुके हैं। सुगम और फिल्म संगीत का उदय होता है तब आकाशवाणी की बात करें तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर सन 1957 को शुरू की गई विविध भारती सेवा। इसके माध्यम से फिल्मी गाने, सुगम संगीत और हवा महल जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटक और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि आकाशवाणी का ये सफर इतना लंबा आपके साथ यानी श्रोताओं के साथ के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद ही तो आकाशवाणी के सफर में साथी बनी। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आकाशवाणी ने भारत के दूर दराज के इलाकों के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में यह 23 भाषाओं और 189 बोलियों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर पूर्व भारत की संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित किए गए। अब आधुनिक बदलावों की बात करें तो डिजिटल और ऐप्स में ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ संगीत का सफर आज मोबाइल ऐप्स यानी न्यूज ऑन AIR और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है। नई सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता रखी गई। अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने नए युग के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए एक नई सिग्नेचर ट्यून और जिंगल्स बनाने की प्रतियोगिता भी शुरू की। आधुनिक श्रोताओं के लिए अब संगीत और बातचीत को आकाशवाणी पॉडकास्ट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सच्चा संवाहक माना जा रहा है। तो यहां हम आपसे बातें कर रहे थे आकाशवाणी के 90 सालों

के सफर की कि संगीत में कैसे कैसे बदलाव हुए, लेकिन आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं से जुड़ा रहा। और हम तो यही कहेंगे, आकाशवाणी का ये सफर हमारे साथ यूं ही चलता रहे।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और बदलता है समाज। आज के भारत में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। नारियां, महिलाएं अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास का मुख्य आधार बन चुकी हैं। आज की नारी शक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निर्णय लेने की शक्ति। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राजनीति की बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त और रक्षा का कार्यभार संभालकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो देश की दिशा तय करने में सक्षम है। प्रशासन की बात करें तो IAS, IPS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या और उनके काम करने के जज्बे ने व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की महिला सिर्फ नौकरी नहीं कर रही बल्कि नौकरियां दे भी रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के कई सफल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बहुत सफलता से कर रही हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों और के माध्यम से गाँव की महिलाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। जहाँ NGOs में इतना काम होता है, इतनी सारी महिलाएं हैं जो गाँव की, पंचायत की और आस पास के एरिया की सारी जो लोक कलाएं हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से था और बात चल रही थी महिलाओं की आज की नारी शक्ति की। अब मंगलयान हो या चंद्रयान, इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी इनसे दूर नहीं है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि नए भारत की आधुनिक सोच को दर्शाती है। डिफेंस की बात करें तो एक समय था जब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन

आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर तैनात हैं और युद्धक भूमिकाओं में अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप, देश को सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महिला खिलाड़ियों ने दिए हैं। जी हाँ, खेल के मैदान में परचम लहराया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने। क्रिकेट से लेकर कुश्ती और बैडमिंटन तक भारतीय बेटियां वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा के माध्यम से पुरानी कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समाज में समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। वो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। आज का भारत इसी मंत्र को हकीकत में बदल रहा है।

0: इस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजों में आपने ये गीत सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:30 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त राधा पाठक। बातें हमने इतनी सारी की हैं और ढेर सारी बातें हमारी बाकी भी हैं। और दरअसल महिलाएं हैं जो, क्योंकि हमारा ये जो घर आंगन कार्यक्रम है ये ख़ास महिलाओं के लिए है, और हम चाहते भी हैं कि महिलाएं काम करते करते जो दिन भर की थान होती है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ थोड़ा सुकून महसूस करें। हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं अपनी महिला सखियों के लिए, और हम चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें जान पाएँ और जागरूक रह पाएँ समाज के प्रति। और हम बता दें अपना ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, वन वे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जवाब ईमेल पर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और क्या होना चाहिए, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो ये हुई ना हमारी बातचीत का पूरा जो स्वरूप है वो यही रहना चाहिए। अब बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल जहाँ देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, घर हो तो पति पत्नी सास ससुर दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची बच्चे भाई बहन सब अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। यहाँ सबके हाथों में मोबाइल है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में यही चल रहा है। अब घर की क्या बात करें, आप बाहर निकलिए, आप किसी भी सरकारी वाहन में आइए, मेट्रो से आते हैं तो देखिए मेट्रो में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हो, ऑफिस जाने वाले युवक हो, पुरुष हो, सबके हाथ में मोबाइल है। महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं वो भी काम किया, कुकर में सीटी आने वाली है, सीटी जब तक आएगी तब तक चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर चाहते हैं सुकून

और शांति और परिवार में आपसी बातचीत बनी रहे, तो ऐसे में डिजिटल उपवास यानी कुछ समय के लिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनानी ही होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिजिटल उपवास करने से मन को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अगर रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को बाधित करती है। डिजिटल उपवास जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल उपवास हो, नींद गहरी और बेहतर हो सकती है। यानी आज के ज़माने में जो कहते हैं ना, उपवास बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, हफ्ते में एक दिन उपवास रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है, तो ये डिजिटल उपवास भी ना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। इससे रिश्तों में सुधार आता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन से दूर होते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता है। लगातार बैठकर स्क्रीन देखने से आंखों में, गर्दन में, पीठ पर असर पड़ सकता है, तो डिजिटल उपवास से शरीर को तो आराम मिलता ही है, एक्टिव रहने की प्रेरणा भी मिलती है और आसपास आप नजर डाल पाते हैं। अब मेट्रो में आप मेट्रो के सफर का मजा लीजिए ना, गाड़ी में बैठे तो बाहर का मौसम का आनंद लीजिए, लोगों को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, क्यों मोबाइल में या स्क्रीन देखनी है। डिजिटल दुनिया से हटकर हम खुद के साथ समय बिता पाते हैं, इसे सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अब ये किया कैसे जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोजाना कुछ घंटों के लिए फोन से दूरी बना लें, सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, मतलब जरूरी फोन और मैसेज आप देख लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म से उनसे दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, नोटिफिकेशन को सीमित करें। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल उपवास कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइस है। थोड़ी सी दूरी आपको ज्यादा सुकून, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन दे सकती है।

अनुराधा फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। और अब देखिए, ट्वेल्थ के एग्जाम तो हो ही गए थे, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और सीयूटी के एग्जाम भी

मिल रहे हैं बच्चों के रिजल्ट के बाद, और बच्चों के दिमाग में ये हो गया क्या करना है क्या करना है क्या करना है। नीट का एग्ज़ाम भी होने को है, CUET के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, फिर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा करियर क्या हो, क्योंकि बहुत जद्दोजहद चलती है आपके रिजल्ट और आपकी अगली लाइफ के बारे में, क्या आपका करियर होना चाहिए। तो AI में करियर, हम आपको बार बार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी है। आजकल कुछ ऐसे भी करियर हैं जिन्हें किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, AI, डेटा की समझ रखने वालों के लिए इसकी हर क्षेत्र में ज़रूरत है, हर सेक्टर में ज़रूरत है। UI/UX डिज़ाइन, एप्स और वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर बनाने का काम ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फुल टाइम करियर बन चुका है। और AI की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है टेक्निकल और इंजीनियर रोल्स हैं, कोर टेक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल के। ये इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम और मॉडल बनाते हैं जो डेटा से सीख सकते हैं, इसके लिए पाइथन और मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। AI डाटा साइंटिस्ट हैं, इनका काम डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का पता लगाना है, AI मॉडल को बेहतर बनाना है। AI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे AI सिस्टम का डिज़ाइन और ढांचा तैयार करते हैं और वो बिजनेस में कैसे काम करेगा ये भी सिखाते हैं। नए ज़माने के जो AI रोल्स हैं, यानी इमर्जिंग रोल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सबसे नया और चर्चित रोल है। इसमें AI जैसे ChatGPT और भी चीज़ें हैं सही से काम करवाने के लिए सटीक और प्रभावशाली निर्देश प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए कोडिंग से ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है। AI एथिसिस्ट यानी नैतिकता विशेषज्ञ, AI पक्षपाती ना हो और नैतिक रूप से सही काम करे, ये सुनिश्चित करना इनका ही काम है। फिलॉसफी और लॉ के छात्रों के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। AI कंटेंट क्यूरेटर, AI द्वारा बनाए गए कंटेंट की जांच करना और उनसे ह्यूमन टच देना। जी हाँ, ह्यूमन टच भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि कोई भी करियर हो लेकिन वो हमें कामयाबी के साथ साथ हमें सुकून भी दे सके।

कुदरत फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब देखिए ना, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, अब महिलाएं ये सोच रही हैं, अब देखिए ना महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और अगर घर भी देखना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो क्या किया जाए, बच्चे बिजी भी रहें और क्रिएटिविटी भी बनी रहे। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात लेकर आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। गर्मियों की छुट्टियां माँ और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय होती हैं। इस समय को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ मज़ेदार क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे फायरलेस कुकिंग, बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच, फ्रूट चाट, लेमनेड और ओरियो शेक जैसी चीज़ें बनाएं। क्योंकि फायरलेस हैं, इसमें बच्चों को खतरा नहीं है कि वो जल सकते हैं, उन्हें किचन की बेसिक समझ हो जाएगी। DIY और क्राफ्ट, पुराने सामान से कुछ नया बनाना, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग, आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया, पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं, बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्क्रीन फ्री मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे लूडो, कैरम, चेस, बिजनेस जैसे खेल दोपहर के समय के लिए बेहतरीन है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी में लगा दिया, स्क्रीन फ्री मनोरंजन बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कहानी सुनाना, अपने बचपन की कहानियाँ, दादी नानी की कहानियाँ सुनाएं, यानी उसी समय को वापस ले आएँ जो बीत चुका है। हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी ना, कब कहाँ इतना स्क्रीन देखते थे, होता ही नहीं था कुछ भी, तो वो समय आना चाहिए, इससे बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। घर को ठंडा और खुशनुमा रखें, इंडोर पिकनिक मनाएं, लिविंग रूम में चादर बिछाकर पिकनिक जैसा माहौल बनाएं, साथ में पसंदीदा स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे मारें ढेर सारे, पानी का खेल खेलें, शाम के समय बालकनी आंगन में टब में पानी भरकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की जा सकती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये जो पानी में टब आ रहे हैं जिसमें बच्चे आप आराम से खूब एंजॉय करते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी होती है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोडिंग, पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जा सकता है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें जल्दी उठना, थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा खेल का समय, इससे वो अनुशासित रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। समर कैंप भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और ट्रेन में कहीं घुमाइए, ट्रेन का मजा लीजिए और बच्चों को सफर का आनंद ले कहीं घूमने निकल जाइए।

गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में अनोखा रिश्ता फिल्म से। अब गर्मियों की बात चली गई है तो गर्मियों में घर को ठंडा रखना भी एक बहुत बड़ी अब देखिए बच्चे घर में रहेंगे, आप भी घर में हैं, अब घर को ठंडा कैसे रखा जाए? पूरा टाइम एसी चलाना ना तो सेहत

लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तेज धूप के कारण दीवारें भी तप रही हैं, घर का तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे करते हैं घर की दीवारों पर जिन पर सीधी धूप पड़ती है उन्हें हरे नेट से ढक दें या शेड लगवा दें। दीवारों को धूप में गर्म नहीं होने देना है ताकि घर का तापमान न बढ़ पाए। घर की बाहरी दीवारों पर हीट प्रूफ पेंट करवाने से भी तापमान कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप गर्मी में घर को ठंडा रख सकती हैं। गर्मी के दिनों में भारी पर्दे लगवाने चाहिए। गहरे रंग के पर्दे तेज सनलाइट को, गर्म हवाओं को कमरे में आने नहीं देते, जिससे कमरे का तापमान कम रहता है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, पौधे के अंदर तापमान को कम करने में मदद भी मिलती है। ठंडे पानी से दो बार घर में पोंछा भी लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। घर साफ रहता है तो मौसम और तापमान कमरे का ना ठीक रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। साधारण पीले बल्ब जो हैं बहुत गर्मी पैदा करते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, ये ठंडे होते हैं। सूती कपड़ों का प्रयोग कीजिए, बेडशीट तकिए कवर सिर्फ सूती ही करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप इस्तेमाल करके घर को ठंडा रख सकती हैं और खुश रह सकते हैं।

सपना नहीं।

0: रफू चक्कर फिल्म में ये आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम घर आंगन से अब राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ

0: द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. addressing the business and

की फिल्म से। तो देर ना करते हुए सुनवाते हैं आपको ये गीत, जिससे कि हम सभी को पता लग जाए कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आशा करती हूँ इस गीत को सुनकर आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1969 की एक भारतीय हिंदी हॉरर फिल्म थी। इसमें अभिनय किया था सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारों ने। फिल्म की कहानी एक ऐसे राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो कि लाल दुल्हन के परिधान पहने हुए महिलाओं का अपहरण और हत्या करता है। दोस्तों, जानी दुश्मन 25 मई 1969 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म समीक्षकों से इसे मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। साथियों, व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था।

दोस्तों, ये अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अब बात करें इस फिल्म के अभिनय की, तो सुनील दत्त थे लखन के रूप में, संजीव कुमार थे ठाकुर के रूप में, जितेंद्र अमर के रूप में थे, शत्रुघ्न सिन्हा शेरा के रूप में, स्पेक्टर के रूप में थे विनोद मेहरा, चंपा के रूप में थी रेखा, रेशमा के किरदार में थी रीना रॉय, और लाखन की छोटी बहन के रूप में थी गौरी नीतू सिंह। योगिता बाली ठाकुर की दुल्हन के रूप में थी, शांति के रूप में बिंदिया गोस्वामी थी जो कि शेरा की छोटी बहन बनी थी, सारिका बिंदिया के रूप में थी, विक्रम मंकादर शंकर के रूप में थे और प्रेमनाथ पुजारी के रूप में था। दुल्हन जिसका अपहरण होता है और वो जो अपहरण करते हैं उसके रूप में थे अमरीश पुरी, रजा मुराद ठाकुर ज्वाला प्रसाद के रूप में थे, शक्ति कपूर एक दुल्हन के साथ घोड़े पर सवार व्यक्ति के रूप में थे, मैकमोहन टैक्सी ड्राइवर के रूप में था और जगदीप नाथुराम के रूप में थे।

दोस्तों, अब लेते हैं आपके संदेश जो कि आपने हमें बड़े प्यार से भेजे हैं। सबसे पहला संदेश आता है हमारे पास वीरम गांव गुजरात अजीत भावसार प्रमिला भावसार जी का। अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और केथल हरियाणा से मधु नायक जी का। और अगला संदेश जो आया है हमारे पास गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी का। इन्होंने भी सही फिल्म पहचानी है और आप सभी ने हमें फिल्म को पहचान कर संदेश भेजे हैं। अगला संदेश है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर निर्मला नवाकर विशाल नहावकर जी का। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हमारे पास जो हमारा अगला संदेश है वो है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों, इस फिल्म के अधिकांश जो दृश्य थे वो जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र उधमपुर जिले के चेनानी और पटनी टॉप हिल स्टेशनों जैसे स्थानों पर फिल्माए गए थे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच शामिल होणगे। पेट्रोल ते डीजल दियां कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर दा वादा कीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तियां नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते बिना छड्डण ते अपने पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है। पंजाब विच दो वख वख सड़क हादसों विच 5 लोगों की मौत। पंजाब ते हरियाणा च आउंदे दिनों च लू की स्थिति बनी रहेगी। ज्यादातर जिलों विच पारा होर वधण की संभावना। आईपीएल क्रिकेट विच आज राजस्थान रॉयल्स

है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेती फरीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम पेतिरी ओरपो, आइसलैंड की वजीर आजम मोहतरमा क्रिस्टन फरोस्ता दोतिर और स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टर्सन भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़े होगी। एक मजमून में जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खास तौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इकतसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज़े मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाये हुआ है, दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बैनुल अक़वामी ताउन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई हैं। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनूब की एक जिम्मेदाराना आवाज़ के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाज़े संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दत तराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पहले की इन हिदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि आवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वह इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि यह लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जाम स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक इकदार और दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक आला सतह की एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मकाम पर शुरू हो गई है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़ीरे आला सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं।
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے. دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98 روپے 64

पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये फी लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल की कीमत 96.07 रुपये। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की कीमत 96.11 रुपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवे ने चेन्नई के नवाही

0: ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग

0: दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे, वो भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपनी बेमिसाल सुंदरता, मनमोहक मुस्कान और बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था। तो चलिए, इतनी जानकारियों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कलाकार के बारे में बातें हो रही है। तो आइए, आप सभी के लिए पेश है ये गीत। गीत सुनकर गेस कीजिए हमारे आज के इस कलाकार को।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आज की जो हमारी कलाकार हैं वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला हैं। जी हाँ, मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ बॉम्बे चली गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 1942 में आई बसंत से हुई। लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की। 1950 के दशक में देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला ने 2 दशक लंबे करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कॉमेडी फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक नाटक तक शामिल थे। छोटी उम्र से ही फिल्मों की शौकीन होने के कारण वह अक्सर अपनी माँ के लिए अपने पसंदीदा दृश्यों का अभिनय करती थीं और अपना समय नृत्य करने और फिल्मी किरदारों की नकल करने में बिताती थीं।

श्रोताओं, आप में से कई सारे लोग मधुबाला जी का असली नाम शायद ही जानते होंगे। उनका असली नाम मधुबाला नहीं बल्कि मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। बतौर अभिनेत्री फिल्मी करियर की शुरुआत करने पर उनका असली नाम बदलकर स्टेज नेम मधुबाला रख दिया गया। मधुबाला जी ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया। उनके पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण उनकी छोटी बहन जाहिदा को छोड़कर मधुबाला एवं उनकी अन्य बहनें कभी स्कूल नहीं गईं। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी एवं पश्तो सीखी। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए 7 वर्षीय मधुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया, जहां वह ख्वाजा खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाती थी। उन्होंने वहां कई महीनों तक काम किया और बॉम्बे में बॉम्बे टॉक स्टूडियो के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हुई, जिन्होंने उन्हें 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका दिया। श्रोताओं, मधुबाला की प्रमुख फिल्मों में 1949 में आई फिल्म महल, 1951 की फिल्म तराना, मिस्टर एंड मिसेस पचपन जो 1955 में रिलीज हुई थी, 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज, 1960 की फिल्म बरसात की रात, काला पानी।

एवं सबसे प्रतिष्ठित फिल्म मुगले आजम शामिल हैं। 1949 में आई फर्स्ट क्लासिकल हॉरर फिल्म महल जब रिलीज हुई, तब उसमें बेहतरीन अभिनय के कारण मधुबाला जी रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा ही, साथ ही साथ मधुबाला जी को एक नई पहचान भी दे दी।

श्रोताओं, 1960 में रिलीज हुई के आसिफ द्वारा निर्देशित फिल्म मुगले आजम में मधुबाला जी का अभिनय विशेष उल्लेखनीय है। इस फिल्म में सिर्फ उनका अभिनय ही नहीं बल्कि कला के प्रति समर्पण भी देखने को मिलता है। इसमें अनारकली की भूमिका उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म समीक्षकों को तथा दर्शकों को भी ये मेहनत और लगन साफ साफ दिखाई पड़ी। असल में ये मधुबाला और इनके ऑपोजिट दिलीप कुमार साहब की मेहनत ही थी जिसने इस फिल्म को सफलता के चरम पर पहुंचाया। इस फिल्म के लिए मधुबाला जी को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। मधुबाला जी का लगातार गिरता हुआ स्वास्थ्य उन्हें अभिनय करने से रोक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने इस फिल्म को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। फिल्म के निर्देशक वास्तविकता लाना चाहते थे। वे मधुबाला की बीमारी से भी अनजान थे, इसलिए उन्होंने शूटिंग के लिए असली जंजीरों का प्रयोग किया। नतीजा ये निकला कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की लोकप्रियता के वजह से इस फिल्म को 2004 में पुनः रंग भर के पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया।

श्रोताओं, अगर बात करें मधुबाला जी के पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला जी की मुलाकात हुई और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे करीब 9 साल तक एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में रहे। इस जोड़ी ने तराना, संग दिल, अमर और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। मधुबाला और दिलीप कुमार जी की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे चर्चित रही। जैसा कि हमने बताया कि ये रिश्ता लगभग 9 साल तक चला, जो अंततः पारिवारिक और व्यक्तिगत अहम की टकराहट के कारण अधूरा रह गया।

श्रोताओं, दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला जी ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता एक बेहद दुखद और भावनात्मक रिश्ता था। मधुबाला जी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VCD नाम जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसे आम बोलचाल में दिल में छेद होना कहते हैं। इस कारण से उन्हें बेहद तकलीफ होती थी तथा सांस लेने में परेशानी होती थी। उस दौर में इस बीमारी का इलाज ना होने के कारण महज 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पर आज भी मधुबाला जी हमारे दिल में बसती हैं। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और टैलेंट जो हमने फिल्मों में देखी है, वो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम

0: का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात
1: जी। विमृषि श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से
0: जी। श्रोताओं आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ ये पृथ्वी के तापमान और

0: जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे, गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
1: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559, और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
0: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इंसान की नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हाँ?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।

0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरमा,
2: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि

0: चार ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों। चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार
2: हैं। नहीं कटने देंगे,
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
5: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
6: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे क्या कर रहे हो?
8: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो पेड़।
7: अरे भाई कौन है? रुको, इसे हम चल जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
7: अरे कहां से
8: दो मिनट की बात में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है पेशगी इस काम के लिए।
7: चिपक जाएंगे,
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
6: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है।

0: यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: दिया है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। स्मार्टफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए हम बआसानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन तालीम, ख़रीदारी और बैंकिंग ने वक्त और मेहनत की बचत की है। टेक्नोलॉजी की मदद से रابطہ करना भी आसान हो गया है, जैसे सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स। ये सेहत, तालीम और कारोबार के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ताहम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है। मजमूई तौर पर टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा सहल और तरक्की याफ्ता बना दिया है। तवानाई का मुस्तकबल दुनिया के लिए एक अहम मौजू बन चुका है। दुनिया अब रिवायती ईंधन से हटकर काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जा रही है। रिवायती ईंधन जैसे तेल और कोयला महदूद हैं और माहौल को नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए काबिल तजदीद तवानाई जैसे सूरज, हवा और पानी से बिजली पैदा करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले प्लांट्स तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। ये ज़राए माहौल दोस्त हैं और आलूदगी को कम करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तवानाई के बेहतर इस्तेमाल और ज़खीरा अंदोज़ी में मदद दे रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मुस्तकबल की तवानाई का अहम हिस्सा बन रही हैं। हुकूमतें और इदारे साफ तवानाई के मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर हम तवानाई का सही इस्तेमाल करें तो वसाइल को बचाया जा सकता है। मुस्तकबल में साफ और पायदार तवानाई इंसानी तरक्की का बुनियादी सतून होगी। ये एक सच्चाई है कि कई ममालिक अब मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल होने की कोशिशें कर रहे हैं। इंसानी दिमाग और नई तहकीक। इंसानी दिमाग कुदरत का एक नहायत पेचीदा और हैरत अंगेज़ उज़्व है, जो जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ये सोचने, सीखने, याद रखने और फैसले करने की सलाहियत रखता है। नई साइंसी तहकीक के मुताबिक दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से सिग्नल्स के ज़रिए रابطہ करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेन स्कैन और न्यूरो इमेजिंग ने दिमाग के राजों को समझने में मदद दी है। अब साइंसदान दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर और डिप्रेशन के बेहतर इलाज तलाश कर रहे हैं। तहकीक से यह भी मालूम हुआ है कि दिमाग मुसलसल सीखने की सलाहियत रखता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मसनूई ज़हानत और दिमाग के ताल्लुक पर भी तहकीक जारी है, ताकि इंसान और मशीन के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा हो सके। नींद, खुराक और वर्जिश दिमागी सेहत के लिए बहुत अहम है। नई दरियाफ्तें हमें ये समझने में मदद दे रही हैं कि हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि मुस्तकबल में इंसानी दिमाग पर मज़ीद तहकीक इंसानियत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। साइंस हमारी ज़िंदगी का एक अहम और लाजमी हिस्सा बन चुकी है, जो हर लम्हा हमारी रहनुमाई करती है। यह न सिर्फ हमें सहूलतें फराहम करती है, बल्कि हमें कायनात के राज समझने का शऊर भी देती है। साइंस की बदौलत हमने बीमारियों का इलाज, जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार ज़राए इबलाग हासिल किए हैं। यह हमें तहकीक, मुशाहिदा और तजुर्बा के ज़रिए सच्चाई तक पहुँचने का रास्ता सिखाती है। साइंस इंसान को सवाल करने, सोचने और बेहतर हल तलाश करने की तरगीब देती है। तालीम और साइंस का गहरा ताल्लुक है, जो माशरे की तरक्की का सबब बनता है। अगर हम साइंसी उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो हम ज़्यादा बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी बन सकते हैं। साइंस हमें यह भी सिखाती है कि कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। मौजूदा दौर में हर मैदान में कामयाबी के लिए साइंस का इल्म नहायत ज़रूरी है। यह इंसान को अंधी तकलीफ से निकाल कर दलील और हकीकत की तरफ ले जाती है। हमें चाहिए कि हम साइंस को सिर्फ मालूमात तक महदूद ना रखें, बल्कि इस पर अमल भी करें। जब तक साइंस को मकामी ज़बानों में आम नहीं किया जाएगा, वो मुल्क की बड़ी आबादी तक नहीं पहुंच सकेगा। नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर साइंस की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो मुस्तकबल के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। याद रखिए, इल्म वो रोशनी है जो इंसान को तारीकी से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करती है। लिहाजा साइंस को अपनाना ही एक रोशन, महफूज और कामयाब मुस्तकबल की ज़मानत है। हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान दोबारा साइंसी तरक्की की राह पर गामजन है।
1: सामईन, अभी आप सुन रहे थे साइंसनामा, जिसे पेश कर रहे थे जनाब नौशाद आलम।

और आइए समय अब नज़र डालते हैं साइंस की कुछ और सरगर्मियों पर। साइंसदानों ने तरबूज के हैरानकुन तिब्बी फवायद दरियाफ्त कर लिए। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि तरबूज सिर्फ गर्मियों का एक मज़ेदार फल नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग बाकायदगी से तरबूज खाते हैं उनकी मजमूई गजाई आदात बेहतर होती हैं, उनके जिस्म में विटामिन, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट की मकदार ज्यादा पाई गई, जबकि वो निस्बतन कम इजाफी चीनी इस्तेमाल करते। तहकीक में बताया गया कि तरबूज जिस्म को पानी की मुनासिब मकदार फराहम करने के साथ साथ दिल की सेहत और निज़ाम हाजमा के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि 7 दिन का मुसलसल रोज़ा इंसानी जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा करता है। साइंसदानों ने एक नई तहकीक में दरियाफ्त किया है कि जब इंसान 7 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए, यानी कि रोज़े की शक्ल कह लें या फास्टिंग कह लें, इसी तरह रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म में गहरी अंदरूनी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तहकीक के मुताबिक इब्तदाई 3 दिनों में जिस्म अपनी तवानाई के ज़खायर इस्तेमाल करता है, जबकि उसके बाद जिस्म चर्बी को तवानाई में तब्दील करना शुरू कर देता है। इस दौरान जिस्मानी खुलियात की मरम्मत, जहरीले मादों के अखराज और मेटाबॉलिज्म में नुमाया तब्दीलियां देखी गईं। माहिरीन का कहना है कि ये नतायज मुस्तकबिल में फास्टिंग के तिब्बी फवायद को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। जदीद नैनो टेक्नोलॉजी से चूहों में अल्जाइम्स की अलामत खत्म करने में कामयाबी। साइंसदानों ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से चूहों में अल्जाइम्स की अलामत को कामयाबी से कम कर दिया है। तहकीक में इस्तेमाल किए गए खसूसी नैनो ज़र्रात ने दिमाग में जमा होने वाले जहरीले अमाइलाइड प्रोटीन्स को साफ किया और दिमागी हिफाजती रुकावट ब्लड ब्रेन बैरियर को बहाल किया। इस इलाज के बाद चूहों की याददाश्त और दिमागी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखी गई। माहरीन का कहना है कि अगर यही नतज इंसानों में भी सामने आए तो अल्जाइम के इलाज में एक इनकलाबी पेशरफ्त हो सकती। 15 करोड़ साल कदीम स्टेगोसार की खोपड़ी ने डायनासोर की इर्तका से मुतालिक तसव्वुरात बदल दिए। स्पेन में माहिरीन आसार कदीमा ने स्टेगोसार डायनासोर की 15 करोड़ साल पुरानी एक नहायत महफूज खोपड़ी दरियाफ्त की है। ये यूरोप में मिलने वाली अपनी नौयत की सबसे मुकम्मल खोपड़ी करार दी जा रही है। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को स्टेगोसार की जिस्मानी साख्त, खुराक और इर्तकाई सफ़र को बेहतर अंदाज में समझने का मौका फराहम किया है। महक़िक़ीन के मुताबिक ये दरियाफ्त डायनासोर की तारीख के कई अहम सवालात के जवाब दे सकती है। 1200 साल कदीम गुमशुदा मखतूते में पहली अंग्रेजी नज्म दरियाफ्त। रोम में दरियाफ्त होने वाले कदीम मखतूते ने अंग्रेजी अदब की तारीख में नई रोशनी डाली है। ये 1200 साल पुराना नुस्खा तवील अरसे से गुमशुदा समझा जा रहा था, जिसमें अंग्रेजी जबान की अवलीन मारूफ नज्म कैडमिंस हाइम महफूज पाई गई। माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त न सिर्फ कदीम अंग्रेजी शायरी बल्कि इब्तदाई यूरोपी अदबी रिवायत को समझने में भी बेहद अहम है। नई तहकीक ने यूयू डाइटिंग से मुतालिक सबसे बड़े खदशे को मुस्तरद कर दिया। एक जामे तहकीकी जायजे में बताया गया है कि बार बार वजन कम करने और दोबारा बढ़ने के अमल, जिसे यूयू डाइटिंग कहा जाता है, के बारे में पाए जाने वाले खदशात इतने दुरुस्त नहीं जितने पहले समझे जाते थे। माहिरीन ने कई दहाइयों पर मुहित इंसानी और हैवानी मुतालियात का जायजा लिया और पाया

इससे मेटाबॉलिज्म को मुस्तकिल नुकसान पहुंचने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि बाज़ कैंसर कीमोथेरेपी से कैसे बच निकलते हैं। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि बाज़ सरतान ज़दा खुलियात एक ख़ास प्रोटीन यानी MYC की मदद से अपने ख़राब शुदा DNA की मरम्मत कर लेते हैं, जिसके बायस वो कीमोथेरेपी के बावजूद ज़िंदा रहते हैं। साइंसदानों को कहना है कि इस दरियाफ्त से कैंसर के इलाज के नए तरीके सामने आ सकते हैं, जिनके ज़रिए इन खुलियात को ज़्यादा मौसर अंदाज में निशाना बनाया जा सकेगा। और आइए सामीन एक बार फिर सुनते हैं खूबसूरत गज़ल।

तो सामईन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम साइंस की दुनिया। इसी के साथ अपने मेज़बान यानी खिसाल मेहदी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंदू प्रेस चैनल है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदुप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने ही वाले हैं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: 全印度广播电台接下来将播放播送全印度广播电台昨天播出的英语节目 Spotlight 的节选部分，请大家收听一下。
1: Spotlight。
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about Prime Minister's ongoing visit to five nations, a new era of bilateral ties with the Nordic countries. And today we have with us international affairs expert Professor Gulshan Sachdeva. Welcome to the show, sir. In the fourth leg of his five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi reached Norway today for the third India-Nordic summit and other bilateral engagements. The visit marks the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. The Prime Minister was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Professor Sachdeva, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the joint press, he stressed upon the India-Norway Green Strategic Partnership. He, in fact, also talked about the green shipping to blue economy. And while winding up his address, he also talked about the Green Strategic Partnership developing into a trusted, futuristic and long-term partnership. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say.
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी.
2: हाउ डू यू सी दिस?
4: All these statements which Prime Minister has made, this also shows a very clear strategy of India towards Europe. For long, we have understood Europe and India-Europe relation purely in the context of

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे युवा सहयोगी
2: शिवांश रक्षित।
1: तो शिवांश, कहां से आज शुरू किया जाए क्योंकि ढेर सारी खेलों की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कई टीमें बाहर हो गई हैं, कई टीमें क्वालिफाई हो गई हैं, तो आईपीएल में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत भी आईपीएल से करते हैं। तो क्या क्या आईपीएल में हो रहा है आइए सुनते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से मात दी। जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ का टिकट तो हासिल किया ही है, साथ ही नॉकआउट के लिए गुजरात की जगह भी कंफर्म हुई। गुजरात और हैदराबाद के अब 16-16 अंक है और प्लेऑफ की रेस में मौजूद 5 टीमों में से अब सिर्फ राजस्थान ही इतनी अंकों तक पहुंच सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मुकाबलों में 9 जीत के साथ पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने भी शीर्ष 4 में अपनी जगह बना ली है। वहीं इस मैच में इस सीजन में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आए। MS चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम में महज 18 के स्कोर पर ट्रेविस हेड का विकेट गवा दिया था, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ 31 गेंदों में 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 56 के स्कोर तक पहुँचाया। अभिषेक 21 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 बाउंड्री शामिल रही। यहां से हेनरिक क्लासन ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रन जोड़कर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। क्लासन 26 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी में ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। किशन 47 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जब तक ईशान का विकेट गिरा, तब तक टीम जीत की दहलीज तक पहुंच गई थी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कार्तिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की। CSK ने 100 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गवा दिए थे, जहां से डेविल ब्रेविस ने शिवम दुबे के साथ 5वें विकेट के लिए 48 गेंदों में 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। ब्रेविस 27 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम दुबे ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। हैदराबाद के लिए

0: के साथ वो टॉप पर बने हुए हैं टेबल टॉप में, और उन्होंने गुजरात की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। जीटी ने 13 मुकाबले खेले, 8 जीते 5 हारे और 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। सनराइजर्स की टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है, 13 मुकाबलों में 8 जीत और 5 हार के बाद 16 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पंजाब की टीम के 13 मुकाबलों में 6 जीत 6 हार और 1 अनिर्णय के साथ 13 अंक उनके हैं, और वहीं राजस्थान रॉयल्स के 12 मुकाबलों में 6 जीत और 6 हार के बाद 12 अंक है। सीएसके के 13 मुकाबले हो चुके हैं और उनके 6 वो जीते हैं और 7 वो हारे हैं। तो एक ऐसी जगह पे हैं कि अगर कोई दूसरी टीम खराब खेले तभी वो क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर शिवांश, जिस तरह से भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मुकाबले होने हैं उसके लिए टीम की घोषणा कर दी गई है, तो शिवांश क्या क्या इस टीम में धमाके हुए हैं, या ये कहें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस टीम में बदलाव लेके आई हैं?
1: जी अजय जी, टेस्ट की जो हमारे पास टीम आई है यहाँ पे शुभमन गिल कैप्टन है और यशस्वी जायसवाल भी हैं, और साथ ही में जो केएल राहुल है वो हमारे वाइस कैप्टन के रूप में खेलेंगे। साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पदिकल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुन्नूर बरार और हर्ष दुबे, और साथ ही में ध्रुव जुरेल के साथ खेलेंगे टेस्ट मैच। और आपको बता दें कि ओडीआई की जो स्क्वाड है उसमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के रूप में रहेंगे, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्जदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे।
0: क्रिकेट की बातों को अब देते हैं विराम और अब बात करते हैं हॉकी की, और हॉकी में अंडर 18 के जो मुकाबले चल रहे हैं उस पर खास रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी शिवांश ने, तो सुनते हैं।
1: भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने आक्रामक खेल का दबदबा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली, जबकि भारतीय अंडर 18 महिला टीम को सोमवार को भोपाल में मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के उद्धव दास मेहता सेंट्रल SAI सेंटर में खेले गए इस दोहरे मुकाबले ने एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीमों के बीच बढ़ती तीव्रता और प्रतिस्पर्धा को उजागर किया। भारतीय पुरुष टीम के लिए श्रृंखला का पहला मैच हारने के बाद यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इस शानदार जीत के साथ अब श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है और अंतिम 2 मैच खेले जाएंगे। इस बीच भारतीय महिला टीम ने एक और करीबी मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती बढ़त को पलटने में नाकाम रही और मौजूदा सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई। सीरीज की निराशाजनक शुरुआत के बाद भारतीय पुरुष टीम ने कहीं अधिक आक्रामक रूप और संयम के साथ वापसी की। मेजबान टीम ने आक्रामक शुरुआत की और मिडफील्ड में उच्च दबाव और तेज पासिंग कॉम्बिनेशन के जरिए जल्दी ही मैच में नियंत्रण स्थापित कर लिया और उनकी यह मंशा 10वें मिनट में रंग लाई जब आकाशदीप ने पहला गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी। भारत ने आत्मविश्वास के साथ आक्रमण जारी रखा और महज 4 मिनट बाद शाहरुख अली ने शानदार गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त में ढील दी। मेहमान टीम ने जवाबी हमले करने की कोशिश की और ओवेन टेलर ने 23वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गोल दागकर स्कोर कम किया। हालांकि भारत का आक्रमण लगातार जारी रहा। केतन कुशवाहा ने 25वें मिनट में पहला गोल दागा और उसके ठीक 1 मिनट बाद रोमित पाल ने एक और गोल करके भारत को 4-1 की शानदार बढ़त दिला दी। इन दो गोलों ने ऑस्ट्रेलिया की रक्षात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया क्योंकि भारत ने मध्य मार्गी रास्तों में लगातार मौके बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 29वें मिनट में ऑस्कर फ्रीमैन और फिर 32वें मिनट में जैक वेलर के गोल से अंतर कम किया, लेकिन भारत ने मैच को फिर कभी प्रतिस्पर्धी नहीं बनने दिया। कुशवाहा ने 40वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा जो एक और शानदार आक्रमण का नतीजा था। इसके बाद अंश ने 45वें मिनट में भारत का 6ठा गोल दागा। अंतिम क्वार्टर में भारतीय रक्षात्मक खेल कहीं अधिक अनुशासित रहा और मेजबान टीम ने बिना कोई और गोल खाए अपनी बढ़त को बरकरार रखा। भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में केतन कुशवाहा के 2 गोल जूनियर टीम में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। सर्कल के अंदर उनकी सक्रियता ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा पंक्ति को लगातार परेशान किया, जबकि श्रृंखला के पहले मैच की तुलना में भारत की मध्य क्षेत्र संरचना कहीं अधिक बढ़िया दिखाई दी। भारतीय टीम ने ट्रांजिशनल प्ले में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाया जो पहले ऑस्ट्रेलिया की शारीरिक रूप से मजबूत खेल शैली के सामने उनके

लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। गेंद पर दबदबा बनाए रखने को, गोल में बदलने की उनकी क्षमता को से कोचिंग स्टाफ अंतिम दो मैचों में पहले विशेष रूप से खुश होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय अंडर 18 महिला टीम को एक और निराशाजनक शाम का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया ने 5वें मिनट में एनलीज के गोल से बढ़त बना ली, जिन्होंने भारतीय टीम के रक्षात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। हालांकि पिछले मैचों में विपरीत भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पहले क्वार्टर के अंत में ठीक पहले संदीप कुमारी ने शांत स्वभाव से गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया, जिससे स्टेडियम में जोश बढ़ गया। इस गोल से भारत के बढ़ते आक्रामक आत्मविश्वास और मैदान के ऊपरी हिस्से में जोखिम उठाने की इच्छा का पता चलता है। मेजबान टीम के लिए दुर्भाग्यवश ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर में लगभग तुरंत ही स्टेला के गोल से बढ़त हासिल कर ली। 17वें मिनट में किए गए उनके गोल ने मेहमान टीम को फिर से बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत की रक्षात्मक संरचना में काफी सुधार हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर करने के अवसर सीमित हो गए और मेहमान टीम को मैदान के बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारतीय आक्रमण ऑस्ट्रेलिया की मजबूत रक्षात्मक व्यवस्था को भेदने में लगातार सफल नहीं हो पाया। भारत की पुरुष टीम के लिए 6 गोल का यह प्रदर्शन आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएगा और पहले मैच के बाद किए गए आक्रामक रणनीतिक बदलावों को सही साबित करेगा। महिला टीम के लिए हालांकि परिणाम पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन करीबी स्कोर लाइन मजबूत विरोधियों के खिलाफ बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देती है। ये मैच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भविष्य के विश्व कप, युवा ओलंपिक और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम में दीर्घकालिक एकीकरण से

0: का कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, आप कभी भी आ जाइएगा, वहां पे आपको इसका समाधान मिल जाएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: इंद्रवीर तेवतिया। नरेश भाई कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया तेवतिया जी, आप बताएं कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हैं, और सारी पंचायत को राम राम।
0: आपको भी, आपको भी नमस्कार तेवतिया जी।
1: जी बताएं क्या सवाल है?
2: सवाल ये है कि जो सिंचाई ईंख हुई हुई है
0: जी,
2: लगभग 28-29 दिन की।
0: ओके, आपने इसका मतलब है कि अप्रैल लास्ट में वो ही है?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, अप्रैल लास्ट में जम रही है सारी।
0: ठीक है,
2: उसमें उसमें सारी ईंख मतलब जम रही है।
0: बहुत बढ़िया।
2: अब उसमें किस उर्वरक का प्रयोग करें जिससे वो और बढ़वार पे आवे, और उसमें मूंग से फसली खेती के रूप में बो गई थी।
0: बहुत अच्छा, तो वो तो फलियां, वो तो अभी आपकी बढ़ रही, आपका 28-30 दिन की होगी, अच्छी बढ़वार कर रही होगी इस समय।
2: जी, 4-4 पत्ते की हो गई है मूंग।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या चाहते हैं आप
2: उसमें? ये चाहते हैं कि क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, और पानी उसमें कब देना चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी है तो आप 10 दिन के अंतराल पे पानी जरूर लगाइएगा, और अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो 12 से 15 दिन के अंतराल पर पानी आप लगाएंगे। उसमें पानी की बात हो गई, पानी आप लगातार अच्छा पानी दे के चलेंगे तो उससे आप ब्यांत कर अच्छा कर लेंगे, अन्यथा आपका गन्ने का की जो लेट बोया हुआ है उसका प्रभाव आपकी फसल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि साहब इसको अच्छा उत्पादन हम कैसे बढ़वा लें, कैसे उसकी अच्छी पैदावार हमको मिल सके, तो आप कोशिश करिएगा कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसमें जल घुलनशील उर्वरक आते हैं, आपका 18-18 का आता है, किसी का कहीं 19-19 का आता है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों चीज़ें होती हैं। इनका अगर आप 15 दिन के अंतराल पर, 15 से 20 दिन के अंतराल पर अगर आप छिड़काव करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका गन्ना जो पिछहत्ता गन्ना बोया है उससे भी अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।
1: तो इंद्रवीर जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है आप वैसे ही करो ताकि आपकी दोनों फसलें बढ़िया रहें, अच्छा उत्पादन आप उससे ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। एक और फोन आ गया जी, पहले फोन ले लेते हैं।
3: The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
1: फोन कट गया है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब। बहनों भाइयों, कार्यक्रम हमारा विशेष कार्यक्रम फोन इन चल रहा है गन्ने की पाठशाला, और आज का जो हमारा विषय है वो है गन्ना फसल को किसानों के का महत्व और उसके लाभ। गन्ना फसल से किसानों को क्या महत्व है, क्या लाभ है, ये हमारा विषय है। आज विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। गन्ना फसल से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई जानकारी आप चाहते हो, चाहे वो खाद से संबंधित हो, दवाओं से संबंधित हो, जैसे अभी आप सुन ही रहे हैं कुछ हमारे फोन आए हैं इस तरह से, किसी भी प्रकार की समस्या आपको है गन्ने की फसल में, तो आप तुरंत फोन उठाइए और मिला दीजिए ये नंबर 2342 42 10 82। दूसरा नंबर है 2342 08 3 23 42 10 83, दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों से पहले आपको दिल्ली का जो एसटीडी कोड है 011 वो लगाना पड़ेगा। अनुरोध करते ही फोन आ गया जी डॉक्टर साहब।
0: चलिए, मैं हम तो चाहते ही हैं कि हमारे किसान भाई जो जो उससे जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा हमसे प्रश्न पूछे।
1: जी हेलो,

0: हेलो राम राम जी।
1: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं बोल रहा हूँ जिला हापुड़ दरभंगा नए गांव से घनश्याम।
2: हाँ घनश्याम जी, बताएं। हाँ
0: सबको आकाश पानी को डांस साहब को नए भाई को सबको राम राम। बहुत
2: आपको भी, आपको
1: बहुत
2: भी
1: राम
2: राम
1: राम।
2: राम।
1: बताओ सवाल क्या है घनश्याम भाई।
0: एक सवाल सर ये है कि आजकल के किसानों को चाहिए कि एकदम पैदा एकदम बढ़ाए।
1: हाँ
0: और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो जो है ना ईद की गोभी होती है तो उसमें उसकी बीज का पत्ता सूख रहा है गोभ का।
2: अच्छा,
0: हाँ ये बीमारी है उसको। हाँ
2: आप घनश्याम जी देखिएगा, आप उसके गन्ने की जो बीज की गोभ सूख रही है तो आप उसको निकाल करके देखिएगा कि क्या उसके
0: अच्छा
2: अंदर गोभ में कोई कीड़ा तो नहीं है, या कीड़ा भी हो सकता है, या उसके अंदर छोटे छोटे थ्रिप्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं
0: अच्छा
2: बहुत। हाँ थ्रिप्स, आप उसको सुबह के टाइम पे आप जाएं या शाम को सूर्यास्त के
0: अच्छा
2: बाद में उस पत्ती को खोल करके देखेंगे, जब बिल्कुल सूर्यास्त, धूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सुबह आप जाएं तो 6 बजे के, 5:30 6 बजे करीबन देखेंगे, तो अगर उसकी पत्तियों में छोटे छोटे कीड़े अगर चिपके हुए हैं या उसमें दिखाई दे रहे हैं थ्रिप्स के, तो वो मतलब पत्ती को रस चूस करके सुखा देते हैं, तो उससे पत्ती सूख
0: हाँ
2: जाती
0: डॉक्टर
2: है।
0: साहब,
2: और
0: डॉक्टर
2: ऐसी,
0: साहब बोलते तो मैं जाता 6 बजे पहुंच जाता हूँ खेत में सुबह
2: हाँ तो
0: गोभी के
2: आप
0: लिए।
2: इसको देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो, क्योंकि इस समय मौसम खुशक हो रहा है और इसमें खुश्की के समय पर जब तेज धूप पड़ती है तो इन कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है, और इसके लिए रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है कि आप थायोमेथोक्सम, एक दवा आती है
0: अच्छा
2: थायोमेथोक्सम 25 WG, WG की एक दवा, पर की पावर की एक दवा आती है, उसकी 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं शाम के समय पे, धूप हटने के बाद में, तो निश्चित
0: ठीक
2: रूप से आपको फायदा होगा। और कोशिश करिएगा कि इसका छिड़काव जो फ्लैट फैन नॉजल से किया जाए और गोभ में पानी जाए।
1: डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूंगा मैं,
0: है
1: जैसे अभी
0: हाँ
1: चर्चा भी हो रही थी कि ज्यादा रासायनिक ज्यादा रासायनिक, तो कितने प्रतिशत अगर इफेक्ट है कीड़े का तो कितने प्रतिशत के बाद छिड़काव करें?
2: देखिए, मैंने ये बात पहले भी, अभी भी मैंने कहा था, अगर 2%, 3%, 5% तक भी अगर कीड़ों का प्रकोप हो रहा है उस समय तक आपको दवा डालने की आवश्यकता नहीं
1: नहीं
2: है। और इसको कोशिश करना चाहिए, जब कीड़े का प्रकोप बढ़ रहा है या बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हमको नहीं करनी चाहिए। यूरिया का जो हमारा रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग कोशिश करें ना करें,
1: ना करें
2: ना अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से इनका इंसिडेंस जो है, प्रकोप है, वो बढ़ेगा,
1: बढ़ेगा।
2: घटेगा नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जी, कौन
0: नमस्कार जी,
1: सा बोल रहे हैं?
0: मैं हरिश्चंद्र शर्मा ग्राम कैली तहसील सरदना जिला मेरठ से और सकोती टांडा मिल के हम कृषक हैं।
2: अच्छा
0: जी
2: सकोती
0: शर्मा
2: टांडा के,
1: शर्मा
2: बताएं।
1: जी बताएं क्या सवाल है।
0: सवाल ये है जी, अगर वो हमारा जो पहला गन्ना है बसंत कालीन वाला,
2: जी
0: उसमें कछुए जैसा कुछ आ गया, जैसा पहला प्रश्न था उसी से मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। अब उसमें ज्यादा तो है नहीं पर हाँ 5% से 10% तक वो बीज का वो गोब सूख रही है, एक तो ये है जी।
2: जी
0: और वो जो हमारा पेड़ी गन्ना है जिसमें 35 गन्ना लगाया हुआ हमने,
2: दो सौ
0: उसमें भी यही
2: पैंतीस
0: पोजिशन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कृपया बताएं।
2: देखिए, अगर आपकी जो पेड़ी है, अगर उसमें, या बावक गन्ना है उसमें कनशुआ की शिकायत आ रही है, क्योंकि ये जो कनशुआ अप्रैल से लेकर के मई तक देखने को मिलता है, इसमें बीज की गोभ सूख जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है, ये इसकी पहचान है। और अगर इसको निकली हुई गोभ को अगर सूंघेंगे तो उसमें सिर के जैसी तीक्ष्ण महक बदबू आती है, ये कनशुआ की पहचान है। इसके बीच में अगर आप खोल करके देखेंगे तो इसमें एक सब आप लाल मूंग की एक गिटार मिलेगी, वो ही इसको काट देती है। तो इसके लिए कार्बो, एक अगर आप पानी दे चलाना चाहते हैं, पानी दे करके कार्बोफ्यूरान एक दवा आती है, कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल, इन दोनों में से कोई सी भी दवा मिल जाती है, तो आप फिप्रोनिल 0.6% की है, ये 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या कार्बोफ्यूरान है वो 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, खून में डाल करके और हल्का पानी चलाएंगे तो एक इसका प्रकोप किसी हद तक आप रोक लेंगे। ये तो आपके नीचे डालने के लिए है, और अगर ऊपर छिड़काव करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया एमिडा क्लोरोपेट एक दवा आती है, 17.5% की दवा है, इसकी 250 से लेकर के 300 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल

0: ना करके अगर छिड़काव करते हैं तो उससे भी आप कीड़ों का इनका प्रकोप कर सकते हैं, और यूरिया का भी प्रयोग ना करें।
1: हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ बोले, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है।
1: हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
0: आप अपना रेडियो का वॉल्यूम कम करें।
2: हम कल्याण सर, नरेश जी नमस्कार, और विशेषज्ञ महोदय को भी हार्दिक प्रणाम।
0: हाँ नमस्कार
1: जी, अपना परिचय तो करा
2: दें। जी मैं जिला भिंडौर यूपी से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ बताएं।
2: पहले तो मैं याद करना चाहता हूँ, पहले ग्राम संसार देते थे वे जवाहर भाई और रामपाल जी।
1: जी जी जी,
2: उनकी याद आती रहती है जब आप प्रोग्राम देते हैं तो।
1: जी जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत
1: अच्छी बात है। अपना नाम नहीं बताया भाई साहब आपने।
2: मैं सत्यपाल जी, मेरा नाम
1: जी। सत्यपाल जी बताएं
2: जी, हमारे यहाँ क्षेत्र में 0238 गन्ना काफी बोते हैं अभी लोग, इसमें बीमारी भी काफी आती है
1: जी।
2: तो हमने ही बोया है, तो उसमें पोका बोइंग जो बीमारी आती है बरसात में, उसके लिए कोई अस्थाई समाधान है क्या?
0: देखिए ऐसा है कि आपका बिजनौर हो गया, अमरोहा है, या मेरठ का एरिया है, ये लगे हुए एरिया है, इन सभी में 0238 वेराइटी को हम लोग रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कृषि विभाग, आपका गन्ना विभाग और शुगर मिल और कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 0238 वेराइटी को रिप्लेस किया जाए, और उसके स्थान पर दूसरी अन्य वेराइटियाँ जो है, आप 0118 है को जो 98
2: सर 35 भी लगाई है,
0: आप इन, पहली बात तो इन वेराइटियों के ऊपर आप आए, 0238 वेराइटी को आप मत लगाइएगा, ये वेराइटी अब सस्टेन नहीं रही है, इसमें बहुत पोका बोइंग का, रेड रोट का, अन्य समस्याएं खड़ी हो गई बीमारियों की। तो दूसरा, अगर आपने बोया हुआ भी है गन्ना पोका बोइंग से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप मैंकोजेब, एक दवा आती है
2: मैंकोजेब सर,
0: हाँ 63% मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 2% कार्बेंडाजिम आती 12%, इनका 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा घोल करके, ये 2 दवाएं हैं, और ये एक मिली हुई 2 साल्ट की दवाएं हैं, मिली हुई मिलेंगी आपको बाजार से, कहीं से भी ले सकते हैं।
2: कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब
0: यस हाँ
2: जी।
0: और इनकी 2 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में घोल बना करके उसके हिसाब से छिड़काव करेंगे। सामान्यतः 1 लीटर, 1 बीघा जो आपका होगा या 1 एकड़ है, तो उसमें लगभग आपका 15 से लेकर 20 लीटर तक पानी आपका लगता है, तो उस हिसाब से छिड़काव करें, और छिड़काव कोशिश करें कि शाम के समय पे 3-4 बजे के बाद छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
2: सर कितने छिड़काव करने पड़ेंगे, कितने?
0: देखिए कोशिश, अगर एक छिड़काव से आपको किसी हद तक आप हो, एक देखिए एक छिड़काव से पूरी तरह से मैं समझता पोका बोइंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि एक छिड़काव आप करेंगे तो 60-70% तक आपका पोका बोइंग, अगर आप ढंग से कर देते तो 60-70% तक आप पोका बोइंग को कंट्रोल कर लेंगे। और उसके बाद में अगर दूसरा छिड़काव करने की जरूरत पड़ती है तो सीओसी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एक दवा आती है, 2.5 किलोग्राम, 2.5 सीओसी जो है 50%।
2: ये तो सर लगाई थी हमने कॉपर ऑक्सी क्लोराइड,
0: हाँ ये दवा भी आपकी पोका बोइंग को किसी हद तक कंट्रोल करती है, ये दवा ये भी मतलब अच्छी कारगर दवा है।
2: इसका सही समय क्या सर, मतलब छिड़काव का कितना बड़ा पौधा होना चाहिए?
0: देखिए पौधा तो आपका इसका देखिए इंसिडेंस जब आपको देख रहे हैं, वैसे सामान्यतः ये बीमारी जो आपके जुलाई से शुरू होकर के अगस्त तक जाती है, ये पहली स्टेज में इसके धब्बे आने शुरू होते हैं, दूसरे में गोब सूखने, बीच की जो आपकी गोब है वहां पर सड़न पैदा होती है, और उसके बाद में सड़ करके ये कट सी जाती है चाकू से, तो ये इसके पोका बोइंग के लक्षण है। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको मैंकोजेब और इनका दवा बताई, उसके बाद में सीओसी का छिड़काव करेंगे तो आप इसको रोकथाम कर सकते हैं।
1: सत्यपाल भाई फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें विश्राम लेना पड़ेगा।
0: ठीक है भाई, आप किसानों की और हम लोगों का सुझाव है तो निश्चित रूप से हम लेते हैं।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें जो विषय चल रहा था गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ, और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत जारी रहेगा समाचार के बाद कृषि जगत कार्यक्रम में।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब सुनिए समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
4: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
4: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की

0: श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।
2: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप कृषि जगत कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत गन्ना फसल का किसानों के लिए महत्व और लाभ। और इस समय हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी है कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो संचालन कर रहे हैं वो है नरेश पारासर, हमारे साथी। तो जो हमारा फ़ोन नंबर है, एक बार हम आपको बता दें, फ़ोन नंबर है 2342-1082, 2342-1083। और जो दिल्ली से बाहर के निवासी हैं वो पिन कोड लगाना ना भूलें, 011। तो बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ, और आपकी कोई समस्या है गन्ने से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।
3: डॉक्टर मिश्रा जी, आपका फोन इन में एक बार पुनः स्वागत करते हैं।
4: मेरा भी सभी किसान भाइयों को राम राम।
3: डॉक्टर साहब, फोन आ गया तो पहले फोन ही ले लें।
4: चलिए, आपको सवाल निश्चित रूप से, आज किसान हमारे बड़े जागरूक हैं, जो बार बार हमारे फोन पे बात कर रहे हैं
3: जी। हेलो,
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं सतीश बोल रहा
3: हूँ। सतीश भाई कहाँ से?
5: हरियाणा से
4: जी। बताएं सतीश,
3: हरियाणा में कहाँ से, बताओ जगह, बताओ।
5: डिस्ट्रिक्ट भिवानी गाँव का चला।
3: भिवानी से, बताइए क्या सवाल है?
5: सर, बात बढ़िया लगती है आपकी, बहुत ही बढ़िया लगती है। किसान तो अनपढ़ होते हैं
3: जी। धन्यवाद।
5: क्योंकि जी विकास तो जरूरी है ना, दवाइयों से होते किसी भी चीज से विकास हो फसल का।
3: जी जी,
5: इसलिए जी समाचार बीच में सुना, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है।
3: चलिए धन्यवाद आपका। आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
5: हाँ जी, सारे सुनता हूँ, लगा रहता हूँ।
3: चलो, कल सुबह भी सुनना, कल सतीश भाई कल भी सुनना, कल हमारा सुबह फोन इन कार्यक्रम है, बात फूलों की जो कार्यक्रम है ना।
5: हाँ जी,
3: वो होगा सुबह 10:10 से लेके 11 बजे तक।
5: इसी मैं तो थोड़ी बहुत लगा लेता हूँ
3: वगैरह। हाँ तो ठीक है, कल हमारा ये भी कार्यक्रम सुनना जी।
5: निश्चिंत होकर जन्म में
3: जी जी जी। और कोई सवाल है गन्ने से संबंधित आपका?
5: जी, थोड़ी गर्मी की शिकायत,
4: थोड़ा बहुत अगर कनसुआ का प्रकोप है तो आप थोड़ा वेट करिएगा और पानी लगाइएगा, रुख कंट्रोल हो सकता है हो जाए। और मैं ये तो आपको कहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ अगर थोड़ा सा भी आपको रुझान है और आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं आपसे सुझाव दूंगा कि नीमाष्टक, एक इसका वो बनता है नीमाष्टक का, अगर आप छिड़काव करते रहेंगे। और नीमाष्टक जो है कई एक सतपर्णी अर्क है, जैसे कई एक आपके पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में मिक्स करके और उनको सड़ा करके फिर आप फसलों पर प्रयोग किया जाता है।

0: है, तो उससे
1: जी
0: भी काफी हद तक आप जो आपकी कनशुआ
1: जी
0: है या थ्रिप्स हैं, ऐसे जो छोटे छोटे कीट हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, जिसमें आपका आक है, जामुन है, आपका नीम है और आपके अमरूद है, इनके पत्तों को लेकर के डेढ़ डेढ़ दो दो किलो पत्तों को लेकर के गाय के गोबर में सड़ाया जाता है, और सड़ाने के बाद में फिर उनको छान करके 1 किलो 1 लीटर ये आपका सत्पर्णी अर्क और उसमें 5 लीटर पानी के सादा पानी के में मिला करके आप छिड़काव करेंगे, तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे कीड़ों से आप निजात पा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो फिर आपको थाइमेथोक्सम है या आपका एमिडा क्लोरोपेड है, इनमें से कोई सा भी एक कीटनाशक 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय पे छिड़काव करेंगे, तो उससे भी आपके ये कनशुआ जैसे बीमार रोग है, वो कीट हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं।
1: तो सतीश भाई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर प्रकोप कम है तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है उसके हिसाब से कीजिए, रासायनिक दवाओं पे मत जाइए, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ही, अभी जो है हमने पहले भी बात की थी इस विषय पे, जरूरत पड़े तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग आपको करना है। अगर जैसे नुस्खा जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे अगर नियंत्रण हो जाता
0: हाँ,
1: है।
0: और फिर इसका ये ऐसे नुस्खा भी अगर आप चाहते हैं तो आपका नज़दीकी कृषि विभाग है या नज़दीकी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ से भी आप इसको विस्तृत जानकारी, क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव होता है इसलिए हम विस्तृत आपको बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कर सकते, लेकिन एक एक संक्षेप में आपको बता दिया कि नीमाष्टक है, सत्पर्णी अर्क है, ये ऐसे जो है कीटों के लिए विशेष करके जो चूषक कीट है या काटने वाले कीट है, इनको इनकी रोकथाम किया आप इनसे कर सकते हैं, और इससे हमको फसलों को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, छिड़काव करने के वाले के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, और हमारा वातावरण भी शुद्ध और रहता, वो भी दूषित नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े किसान अगर आप जागरूकता लाएं प्राकृतिक खेती की तरफ भी, तो इससे हम काफ़ी हद तक रासायनिक दवाओं को उसका क्या जो वो है उसका भी
1: पैसे भी
0: हम
1: बचेंगे डॉक्टर साहब, वातावरण भी बचेगा,
0: हाँ
1: अपनी सेहत
0: हाँ
1: भी अच्छी रहेगी, और जो हमारी धरती माँ है उसकी सेहत भी
0: उसके
1: अच्छी
0: हाँ
1: रहेगी।
0: ये भी तो ये हम बीच बीच में किसानों को ये इसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि किसान भाई नीमाष्टक है, सत्पर्णी अर्क का भी प्रयोग करें।
1: सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल था मेरा वो तो अधूरा ही रह गया। आपने
0: जी
1: बताया कि जो एक तो नकदी फसल है, नकदी के यानी जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर, वो तो मिलेगा ही मिलेगा
0: मिलेगा
1: आपको।
0: ही मिलेगा
1: आपने
0: दूध
1: वो अगर मिल में पहुंचा दी, पर्ची आपकी बन गई, तो वो आपके खाते में आना ही आना है।
0: हाँ, खाते में सीधा पैसा आता
1: ठीक
0: है,
1: है
0: तो
1: जी
0: किसान को इसमें हिसाब रखने की कोई वो नहीं रहती है, सीधा
1: जी
0: उसके खाते में पैसा आ जाता है,
1: जी
0: तो एक एश्योर एक अमाउंट जो उसको 1 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है या 1 बीघा है, तो उसको सीधा पैसा उसको खाते मिल जाता
1: डॉक्टर साहब,
0: है।
1: एक फोन और आ
0: फिर
1: गया।
0: आ गया
1: हाँ जी,
0: किसान का भाई, किसान भाई
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी।
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
0: हाँ, हरियाणा से वेद प्रकाश नंबरदार, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार जी
1: नमस्कार
0: भाई
1: जी,
0: साहब, नमस्कार
1: नमस्कार जी।
0: आपको भी।
1: हरियाणा में
0: हम
1: कहाँ से हो वेद प्रकाश जी?
0: हाँ, जिला चरखी दादरी बिरी कलां।
1: चरखी दादरी जी, बताएं क्या सवाल है?
0: एक जैसे ईख में ज्यादा पानी आने से कुछ नशा सा फूटता है ना, एक नंबर। दो, नीचे से कुछ पोरी रेड और काली हो जाती है, फिर उनमें तरेड़ फट जाती है, और फिर तरेड़ फटी तो उसके अंदर लाली दिखती है। जी
1: देखो ऐसा है कि गन्ना हमारा एक अपना सेल्फ मतलब उसके प्रोपेगेशन का एक माध्यम भी है, तो जब वो गन्ना कहीं पे उसको पानी ज़्यादा मिलता है या पानी डूबा जाता है, तो उससे नीचे की जो आंखें होती हैं वो स्प्राउट जम जाती है, क्योंकि उसका पत्ता
0: हाँ
1: ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से
0: हाँ
1: आंख फूटना शुरू हो जाती है, और आंख जब कोई स्प्राउट करती है तो उसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये मतलब लक्षण जो है आपका गन्ने की उसकी क्वालिटी को, उसके अगर बीज के लिए कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब कर देता है, आप नीचे का गन्ना अगर नीचे जड़ें निकल जाती हैं तो उसको गन्ने के बीज के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, तो एक तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पर गन्ना, लेकिन ये भी बात है कि अगर गन्ने के स्थान पर अगर आप वहाँ पर धान की जहाँ पर पानी ज़्यादा आ जाता है वहाँ पर धान की फसल लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये इस चीज़ से बचाव हो सकता है, धान का चयन कर सकते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है। तरेड़ वाली बात आती है, देखिए इसमें ऐसा है कि आप गन्ने की बुवाई के समय पर ही कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल दोनों में से कोई सी भी एक दवा का अगर आप रुकाव करके

0: मिलते हैं 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये जो कीट है आपका, जड़ बेदक है, गुरदासपुर बोअर है, इनसे किसी हद तक आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: वेद प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो
0: जी,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, कौन
2: नमस्कार सर,
1: साहब बोल रहे हैं?
2: सचिन बात कर रहा हूँ जिला संभल से।
0: जी हाँ, बताएं सचिन जी।
2: अरे सर, मैं हम ये जानना चाह रहे थे कि गेहूं काट के हमने गन्ना बोया था,
0: बिल्कुल ठीक है,
2: तो उस पे वो कुछ कल्ले तो जमी आए हैं ले ऊपर ऊपर के, लेकिन जो नीचे जड़ का गन्ना था वो नहीं जमा, तो उसका कोई इलाज है?
0: देखिए ऐसा है कि इसका इलाज ये है कि आपने, हम लोग बार बार कहते हैं, हमारा वहाँ पर आपके संभल में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि विभाग भी है, गन्ना विभाग भी है। आपने देखिए, हम लोग फिर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि गन्ने में का नीचे का 1/3 हिस्सा कभी भी बीज में इस्तेमाल ना करें। जो भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी उनसे पुरजोर कोशिश है, अनुरोध है कि नीचे का गन्ना का 1/3 हिस्सा बुवाई गन्ने के बीज में इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो आपके जो सचिन भाई हमारे बता रहे हैं उसी तरह की समस्या उनके सामने खड़ी होगी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने कहीं पे आपको जो आपके जनपद में पौध बनाता है, जो ट्रे में पौध तैयार करता है बर्ड चिप के माध्यम से, वहाँ से आप पौध लेकर के और पानी जब चलाएं, जब भी पानी आप लगाएं, उस समय पे जो खाली स्थान बना हुआ है उन पे उन पौधों को रोपित कर देंगे, तो आपकी गैप फिलिंग जो है, जो खाली स्थान बना है, वो उनकी पूर्ति हो जाएगी और आपको प्रति एकड़ या प्रति बीघा जो पौधों की संख्या होनी चाहिए वो पौधों की संख्या आपको मिल जाएगी। और अगर आप बीज डाल के करेंगे तो फिर उनमें बहुत अंतर हो जाएगा, वो आपका कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का जो गन्ना है उसमें वो उस अंतर की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे।
1: सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, फिर कोई फोन आए उससे पहले अपनी चर्चा को फिर हाँ, आगे बढ़ा लेते हैं।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो उनको पैसा मिल जाता, दूसरा किस, अब हम देश के परिपेक्ष में देखें,
1: जी जी,
0: देश के परिपेक्ष में अगर हम देखें गन्ना हमारे लिए क्यों नगदी फसल के रूप में है, तो किसान को तो एक नगद पैसा मिल गया,
1: मिल ही जाता है जी।
0: हाँ, दूसरा परिपेक्ष में अगर हम देखें कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो गन्ने पर पूरी तरह से निर्भर है, हम केवल गन्ने को चीनी के रूप में ही न देखें या गुड़ की खंडसारी के रूप में ही न देखें, गन्ने के ऐसे कई एक चीज उत्पाद बनते हैं जो कि हमारे दैनिक कार्यों में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक आइटम्स में या अन्य कोई चीजें हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप तो सुना है कि जो गाड़ियां वाड़ियां चलेंगी उसमें भी तेल,
0: हाँ एथेनॉल, भाई एथेनॉल गवर्नमेंट ने 20-25% तक ब्लेंडिंग करने की, यानी उनको मिलावट करने की परमिशन दी हुई है।
1: जी, जी।
0: तो अब आप देखेंगे कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि चीनी या गुड़ जो है वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट रह गया है। अब आप ये देखेंगे जितना भी एल्कोहल बनाया जाता, तो एल्कोहल बेस्ड जितनी भी मेडिसिन है उनमें हमारा गन्ने का ही एल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए गन्ने के ऊपर हमारी जो देश की इंडस्ट्री है वो भी निर्भर है। अगर गन्ना का प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता, पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का एवरेज प्रोडक्शन है वो काफ़ी नीचे गिरा है, और उसके पीछे कारण रहा कि जो 0238 जैसे हमारे अभी किसान भाई बता रहे थे, वो गन्ने उसने हमारे किसानों को की पैदावार को काफ़ी प्रभावित किया, उसके पोका बोइंग का प्रकोप ज़्यादा होता है, उसके अंदर रेड रॉट की समस्या आती है, और परिणाम ये होता है कि किसान को उत्पादन कम मिलता है।
1: एक फोन और आ गया डॉक्टर साहब, बात करते हैं। हेलो
3: हेलो जी, डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी,
1: कौन सा बोल रहे हैं?
3: पवन, जिला संभल उत्तर प्रदेश।
0: जी हाँ, पवन जी बताएं।
3: अभी हमने इसमें 238 में फटेरा और डीएपी और यूरिया डाला है
0: जी,
3: तो वो बेगरी बहुत है, क्या घनी हो सकती है उससे डीएपी और यूरिया फटेरा?
0: नहीं देखिए, ऐसा है कि घनी नहीं कर सकते हैं आप, ये देखिए एक चीज देखेंगे कि आपका गन्ना कब का बोया हुआ है।
3: पेड़ी है।
0: देखिए आपको एक, मैं किसानों से फिर मैं एक कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो किसान भाई जब गन्ने की बाबक फसल काटते हैं तो काटने के साथ ही उसके बराबर में जहां कहीं थोड़ा सा खेत चाहिए, आपको बहुत ज्यादा खेत नहीं चाहिए, और उसके ऊपर के 3-4 गन्नों की एक अगर आप पौध डाल देंगे तो वो उसी से क्या फायदा आपको होगा कि जो गन्ने आपके पिछले बाबक फसल में खाली स्थान हो गया था उन खाली स्थान की आप भरपूर की उसकी फिलिंग करके पूर्ति कर सकते हैं। तो ये मैं अभी पीछे भी आपके संबल जनपद के ही किसान भाई को मैं बता रहा था।

0: आप भी वैसे ही कर सकते हैं कि जिन किसान भाई जो आपके जनपद में कोई पौध तैयार करता है गन्ने की ट्रे में, आप वहां से पौध लेकर के उन स्थान पर उसको पानी जब चलाते हैं, शाम पानी चलाएं तो उसी समय पर उनको रोपित कर दें, तो उससे गैप फिलिंग की पूर्ति हो जाएगी।
1: पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया फोन के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: राकेश भाई बताएं क्या सवाल है।
2: मेरा ये सवाल है कि कौन कौन से गन्ने की जो किस्म होते हैं, और ऐसा हमारे लिए कौन सा गन्ना है तो हम अपने प्रदेश में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तापमान थोड़ा कम रहता है।
1: काफी कम रहता है आपका।
0: हाँ देखिए, आपका अब आप जनपद बताएं कि शिमला में आपका कौन सा एरिया है जहाँ पे आप गन्ना लेना चाहेंगे।
2: कोटखाई क्षेत्र।
0: देखो मुझे अब बहुत ज़्यादा आपके वहाँ का टेम्परेचर का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने उस जनपद में, क्योंकि जनपद में हर जगह पर कृषि विभाग है और कृषि विज्ञान केंद्र है, पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि वहाँ पर नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, या कृषि विभाग या गन्ना विभाग कोई भी है आपका, उनसे एक बार सलाह जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके गन्ने जिले के अंदर या आपके एरिया में तापमान 25 डिग्री से नीचे आपका है, अगर
2: जी
0: तापमान रहता है तो गन्ने की खेती आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गन्ना जैसे 25 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा, गन्ना आपका डोरमेंट हो जाएगा, यानी सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, और गन्ने की बढ़वार आपकी नहीं हो पाएगी। गन्ने के लिए औसत तापमान वो 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में मिलना चाहिए। अगर ये तापमान नहीं रहता पूरी साल में, तो गन्ने की बढ़वा आप गन्ने की खेती उस जिले में नहीं करेंगे कर पाएंगे।
1: पवन
2: धन्यवाद
1: राकेश
2: जानकारी
1: जी, बहुत
2: देने।
1: बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, पहले भी राकेश भाई से बात हुई है हमारी गन्ने के बारे में, तो 25 से नीचे वाले में तो थोड़ा परेशानी वाला सबब बन
0: हाँ
1: जाएगा।
0: देखिए, अपने यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा दिसंबर का और जनवरी का महीना होता है, जहाँ तापमान औसत तापमान जो है 15 डिग्री के नीचे आ जाता है, वैसे ही गन्ना डोरमेंसी में
1: डोरमेंसी में चले
0: चला
1: जाता है।
0: जाता है,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वो डोरमेंसी आपकी हमारी 15 फरवरी के आसपास तक रहती है। 15 फरवरी के बाद में वो डोरमेंसी ब्रेक होती है, सुषुप्त अवस्था खत्म होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे गन्ना करना कोई उनके लिए लाभकारी नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितना हमारा हिली एरिया है, चाहे वो हम हिमाचल का है या हमारा जम्मू कश्मीर है या हमारा आपका उत्तरांचल का एरिया है या अन्य कोई प्रदेश है, तो वहां पे अभी कोई, मेरी ऐसी जानकारी में कोई प्रजाति नहीं है
1: जो
0: कि जो
1: इतने
0: तापमान
1: तापमान को
0: तापमान
1: झेल
0: को
1: सके और
0: पे
1: बढ़वा ले।
0: और पैदावार दे सके।
1: जी जी जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो गन्ना है वो खाली मीठे के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसको इंडस्ट्री से जोड़ा गया है, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हो रहा है, तो ना केवल हमारे किसानों की और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने गन्ने की फसल की वो देखभाल अच्छे से करें। जैसे आप बात करते रहते हैं किसानों से,
0: जी
1: केवीके के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, हर बार आप बताते हैं कि भाई ध्यान रखो। जैसे अभी एक किस्म की बात आई है,
0: जी
1: हाँ, इतनी दिनों से मैं सुन रहा हूँ इस बात को कि
0: जी
1: आप इसको अवॉइड करो, इसको
0: हाँ
1: अवॉइड करो,
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन किसान भाई फिर भी मान नहीं रहे हैं।
0: नहीं
1: कारण क्या है डॉक्टर साहब,
0: देखिए,
1: क्यों नहीं सुन
0: किसान
1: रहे?
0: किसान क्या है, देखिए कभी कभी किसान के साथ में एक टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटीज, यानी उसके पास में कभी समय नहीं होता है, और कभी कभी उसके पास में नई कोई प्रजाति है उसकी बुवाई की उपलब्धता नहीं हो
1: जी
0: पाती है,
1: जी
0: तो फिर ये देखता है कि यार ठीक है चलो मेरे पास जो वैरायटी है मैं उसी को बुवाई कर देता हूँ, तो वो एक लेजीनेस भी किसान की परिलक्षित होती है। मैं यहाँ पे एक नरेश जी एक और बात आपके सामने शेयर करना चाहूँगा,
1: जी
0: जो अभी आपने देखा होगा भारत सरकार जो है बहुत जोर शोर से CNG को प्रमोट कर रही है,
1: जी
0: और वो CNG प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के बाद में जो उससे वेस्ट निकलता है इसको FOM के रूप में जाना जाता है,
1: जी
0: उसको कहते हैं FOM, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैनोर लिक्विड और सॉलिड दोनों में
1: जी
0: आता है,
1: जी
0: और ये पूरे कंट्री के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जहां CNG बन रही है उसके अंदर बनाने के लिए के गोबर और वेस्ट के साथ साथ में शुगर मिल की निकली हुई जो मैली है, प्रेस मड है,
1: जी
0: उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस प्रेस मड को जो पहले किसान कोई लेता नहीं था, क्यों किसान उसको फर्मेंटेड नहीं कर पाता
1: जी
0: है, तो ज़्यादातर क्या होता था कि भट्टों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था ईंट को पकाने के लिए,
1: जी
0: लेकिन अब अपने नॉर्थ के अंदर या साउथ महाराष्ट्र के अंदर CNG पंप जो प्लांट लगे हुए हैं उन प्लांटों में इसको एक सिलेरी के रूप में इस्तेमाल करा करके CNG गैस बनाई जाती है, और उससे जो वेस्ट निकलता है उसको एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी क्वालिटी की आपकी खाद
1: खाद
0: बन करके
1: यार।
0: तैयार
1: तो
0: हो
1: डॉक्टर साहब
0: जाती
1: ये
0: है।
1: तो ऐसा ही हो गया जैसे बायोगैस प्लांट हो गया है।
0: हाँ,

0: आप सैलरी बायोगैस करते हैं
1: तो उस बायोगैस में केवल गोबर रहता,
0: गोबर रहता है।
1: अब इसके साथ में गोबर के साथ साथ में प्रेस मड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मतलब हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। और ये हर जनपद में मैं समझता हूँ कि एक ही दो प्लांट लग रहे हैं और आसपास के जनपदों में, और उनको बड़ा सब्सिडी दी जा रही है। और किसानों के लिए भी उनसे कहा भी गया है कि इसको सब्सिडी पे किसानों के में सिलेरी के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी, और सॉलिड के रूप में अगर आप डालते हैं तो उससे क्या है कि आपके खेत का ऑर्गेनिक मैटर जो है, जीवांश है, वो भी बढ़ता है और आपकी रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता भी हमारी कम होती है। क्योंकि भारत सरकार ये चाह रही है कि जो रासायनिक उर्वरक है उनको संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए, और उसके साथ साथ में हमारे अन्य वैकल्पिक चीज़ें हैं, जैविक हैं या प्राकृतिक खेती है, उनके ऊपर भी हमारा किसान आए, जिससे हमारा
0: निर्भरता वहाँ से कम होनी चाहिए,
1: निर्भरता कम हो। क्योंकि देखा है, आप देखेंगे कि अपने देश के अंदर 600 से 650 लाख मिलियन टन रासायनिक उर्वरक का कंजम्पशन किया जाता है, खपत होती है, और उसमें से जो इतना कंजम्पशन है, जबकि जो प्रोडक्शन हो रहा है लगभग 500-550 लाख मिलियन टन ही उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो बाद में हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर देश को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है डॉलर में। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ये आह्वान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँ, जैविक खेती की तरफ जाएँ, और वैज्ञानिक विधि से रासायनिक उर्वरकों का जो हम प्रयोग है संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है, जितनी वैज्ञानिकों ने इसको रिकमेंड किया है, तो जिससे देश को भी आर्थिक रूप से बोझ नहीं पड़ेगा, उसकी सब्सिडी पे नहीं पड़ेगा, और देश की आर्थिक स्थिति में सुधारने में हमारे किसान भाइयों का भी एक भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि अपनी, चाहे वो गन्ना फसल है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे अन्य कोई फसल है, संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करेंगे।
0: बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। अब चलते चलते देखिए, गर्मी की जो बुआई की बात हुई थी, बीच में भी हुई है
1: जी,
0: तो गर्मी की जो फसल है वो हमारी स्वस्थ रहे, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले, इसके लिए कुछ मोटी मोटी खास बातें किसानों को बताएं।
1: देखिए, मेरे जो हमारे किसान भाई, इसमें बहुत प्रश्न आए थे, पिछेता गन्ना बोया हुआ है, ग्रीष्मकालीन गन्ना बोया हुआ है, सबसे पहला मैं उन किसान भाइयों से कहूंगा कि पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर उनकी मिट्टी दोमट है, मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो पानी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर पानी उनके की नहीं आपने उन्होंने दिया 10 से 12 दिन के अंतराल पर, तो उससे क्या होगा, गन्ने का जमाव है और ब्यांत दोनों ही प्रभावित होगा।
0: तो सब मोटा मोटी देखें, जैसे अब तापमान है वो 44 के आसपास है, 43, तो इसमें कितने दिन के अंतराल पे कर देनी चाहिए?
1: मैंने आपको कहा, ये पानी की जो सिंचाइयां की जाती हैं वो मिट्टी की प्रकृति के ऊपर की जाती है।
0: अच्छा।
1: तो मिट्टी कैसी है हमारी, अगर चिकनी मिट्टी है तो वो पानी को सहन करने की उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर बलुई मिट्टी है तो उसकी पानी रोकने की क्षमता जो है कम होगी, तो पानी हमको जल्दी देना।
0: तो जैसी अपनी मिट्टी है उसके हालात के हिसाब से आपको पानी की सिंचाई
1: करनी है।
0: तो डॉक्टर साहब देखिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे भाई हैं वो आपकी बात पे ध्यान देंगे, और जैसा भी आपने बताया, जैसे रासायनिक और बाकी जो हमारी खादें हैं उनका सम्मिश्रण करके प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा भी, सभी किसान भाइयों को जो मेरे कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी को राम राम।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
4: हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय था गन्ना फसल व किसानों के लिए इसका महत्व और लाभ, और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं केवी के अमरोहा कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से।
5: बिल्कुल, और आगामी कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, कल 10:10 पर सुबह आप सुनेंगे

विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे बागीचों एवं घास का उचित प्रबंधन और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मामचंद सिंह और डॉक्टर शिव शंकर सिंह। और इसी के साथ हमारा जो कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होने को है। आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारासर और संयोजक हैं शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हवाई परियोजना का हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
2: केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
1: श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
3: नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर्स के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
1: राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
5: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूं इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सके, बाद में जिन्हें रिसाइकिल करके फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
4: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।

0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए, ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों की सराहना की। इसके साथ ही श्री संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी, जो व्यवहारिक, वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण

0: अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशिएंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहाँ प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की

मृत प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जहां हर धड़कन के साथ बजते हैं मोहब्बत के सबसे खूबसूरत गीत। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, और अगले 45 मिनट तक हम बात करेंगे प्यार की, यादों की और उन एहसासों की जो सीधे दिल को छू जाते हैं। तो चाय की एक प्याली लीजिए, दिल को थोड़ा आराम दीजिए और खो जाइए इस सुरीले सफर में। पहला प्यार जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास होता है, जब किसी का चेहरा हर वक्त आंखों के सामने रहने लगे तो समझ लीजिए दिल को प्यार हो गया।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम जी की थी। प्यार में इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ ही लेता है। एक मुस्कान, एक मैसेज या सिर्फ उसका नाम सुनना भी दिल को खुश कर देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जब वी मेट से और आवाज थी मोहित चौहान की। श्रोताओ, अगर इस वक्त आपको किसी की याद आ रही है तो दिल से उन्हें एक मुस्कान जरूर भेजिए, हो सकता है वो भी आपको ही याद कर रहा हो। श्रोताओ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना वजह दिल से जुड़ जाते हैं, शायद उसी एहसास का नाम प्यार है।

प्यार सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं, किसी का ख्याल रखना भी प्यार ही होता है। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो हमने लिया था फिल्म एजेंट विनोद से। आवाजें थी हमसे का अदिति सिंह और जॉय की। जब किसी की आदत दिल को लग जाए तो हर पल बस वही याद आता है।

न चांद चाहिए न सितारे चाहिए, बस तुम साथ हो तो हर नज़ारा प्यारा होना ही चाहिए। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से, और आवाज़ आतिफ असलम की। प्यार में कभी खुशी होती है तो कभी थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन यही एहसास उसे और भी गहरा बना देता है। सच्चा प्यार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल में साथ चलना जरूर जानता है।

हर दिल चाहता है कोई ऐसा हो जो उसे समझे, अपनाए और कभी अकेला महसूस ना होने दे। श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था वो थी फिल्म तमाशा और आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की थी। कुछ लोग जिंदगी को सच में खास बना देते हैं और तब दिल कह उठता है, तुम मिले तो जीना आ गया।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। ये जो गीत हमने सुना वो हमने लिया था फिल्म तुम मिले से। आवाज़ नीरज श्रीधर की थी। तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, तेरी मुस्कान से शुरू हुई कहानी हमारी, अब हर खुशी में बस नाम तुम्हारा है।

श्रीनिवास की। कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं, है ना?

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का खूबसूरत सफर गीत मालिका के साथ। उम्मीद है ये सुरीली शाम आपके दिल को छू गई होगी। अपने प्यार को हमेशा संभाल कर रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुभ रात्रि और मीठे सपनों के साथ फिर मिलेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन

की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने

आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जु राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया।

0: अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ. निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार और उज्ज्वल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु योमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo, yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Minister of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital Rome on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. United Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और दोस्तों रात के 1:10:16 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसे लेकर हम आपके साथ हैं और हमें इस बात का पूरा एतबार है कि आप भी हमारे साथ ही होंगे।

दोस्तों, युग बदलने के साथ तकनीक भी बदली, लोगों के सोच भी बदली, लोगों के रहन सहन बदले, लोगों के बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन कुछ इमोशंस, कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं ऐसी हैं जो हम इंसानों में हैं और वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, सालों से रहती रही हैं, आगे भी कई सालों तक ऐसी ही रहेंगी।

दोस्तों एक दौर था जब हीरोइन को हीरो को बनाना होता था, तो बोलती थी बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा शायद, लेकिन उन गानों को याद करके हम उस वक्त को और समय के साथ कहीं ना कहीं अपने दिल को सुकून तो दे ही सकते हैं। और बस वही सुकून देने के लिए तो हम आपके साथ हैं रात के 1:21 पर।

दोस्तों, मोहब्बत में नज़रें मिलती हैं, एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि बाकी सारे एहसास उतने नहीं करीब हो पाते। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें और गहरी होती जाती हैं और चीज़ों को समझते जाते हैं, तब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि दिल टूट सा जाता है।

दोस्तों, गानों के ज़रिए हम कितने एहसास, कितने जज्बात, कितने अरमान सब कुछ जान पाते हैं। और उन्हीं गानों के ज़रिए एक खूबसूरत सा नगमा है किशोर साहब की आवाज़ में, आप भी सुनिए।

दोस्तों, जीवन में बहुत सारे रंग आते हैं। जीवन में कभी हम बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं और कभी तो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा, जैसे कि इस वक्त हम हैं। लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। और अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी अकेलापन लगे तो हमेशा इस गाने को सुन के उस बात को महसूस कीजिएगा, तो आप यकीन जानिएगा कि आपको कभी अकेलापन तो नहीं लगेगा।

दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अकेले आए हैं और अकेले ही ये सफ़र तय करना है। लेकिन लेकिन लेकिन जनाब, अगर आपको राह में किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, तो हमेशा हमेशा हमेशा उनका साथ दीजिएगा। चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन साथ कभी नहीं छूटना।

दोस्तों, ये तो आप मानेंगे कि ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत सख्त है, बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस कठिन ज़िंदगी में भी जो मुस्कुराते हुए चलते हैं, ज़िंदगी का साथ निभाते हुए चलते हैं, वही ज़िंदगी को अपनी सफल बना पाते हैं। और ये नहीं है कि आपको हर कोई दोस्त मिलेगा, हर कोई आपको अपना मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको यकीनी तौर पर, जो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा दुख देंगे, थोड़ा सा।

दोस्तों रात गहराती जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ देर का आपसे विदा लेना पड़ेगा आपसे, लेकिन हम आपके साथ हैं और इस एतबार के साथ कि आप ही हमारे साथ हैं लगातार।

0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट UG परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्यकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के

शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन्स गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड that the relations between India and Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand. No compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljeet Sehrawat, Bhayajayant Panda and Dr. Nishikant Dube. From the Rajya Sabha, the committee includes Vinod Sridhar Tavade, Sujit Kumar and Ujjwal Devaram Nikam. The Government of West Bengal's Department of Women and Child Development and Social Welfare has issued an official notification introducing the Annapurna Yojana scheme aimed at providing an assured monthly financial assistance of Rs. 3,000 to women residents for their socio-economic upliftment. Scheduled to take effect from June 1, 2026, the financial aid will be credited directly through Direct Benefit Transfer DBT into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. The Government of West Bengal has notified 66 classes of OBC list for reservation in the services and post under the state government following the Calcutta High court order and cancelled the 10% reservation for OBC.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में NEET UG की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह

0: अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।
2: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

Ma da da ba ba ma.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थे टीके रंगाराजन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 29वीं तिथि। तदनुसार मई 2026 सुबह के 4:53 और 56 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपनी ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。